हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के बैसाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम में 103.2 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने वाले हैं। और अब हिंदी में समाचार के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी

0: कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजे आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजे को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार आप रायपुर दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम 103.2 MHz पर 6:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले आइए करें वंदना इस पावन मातृभूमि की।

भगवान श्री गणेश को समर्पित इस मधुर भजन के बाद आइए सुने भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये आरती।

प्रभु श्री राम को समर्पित इस भजन के बाद आइए सुनें कार्यक्रम के अंत में प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित ये भजन।

0: और मीरा के इस भजन के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटक, वाचन स्वर अभिनव गौरहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। हमर देश भारत मा शुरू से ही प्राकृतिक खेती होता थे। आज जब पूरा देश केमिकल खेती में भिड़े है, तब होले कतको किसान मन है जौन प्राकृतिक खेती के व्यवस्था ला समझ के ओखर से उत्पादन लेते हैं। अवैया समय मा प्राकृतिक खेती ही टिकाऊ खेती होही। धीरे धीरे किसान भाई मन प्राकृतिक खेती गति बढ़ी। आज जानबो प्राकृतिक खेती के सिद्धांत में विभिन्न घटक का होते। सबले पहली घटक होते देसी गाय। प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से देसी गाय में आधारित है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीव होते, जबकि विदेशी गाय के 1 ग्राम गोबर में केवल 78 लाख सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते। देसी गाय के गोबर और मूत्र के महक से देसी केचुआ भूया से भूया के सतह में आ जाते और भूया ला उपजाऊ बनाते। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते। ये 16 तत्व ही हमर पौधा के विकास में उपयोगी होते। यही 16 पोषक तत्व ला पौधा भूया से लेके अपन शरीर के निर्माण करते। ये 16 तत्व देसी गाय के आत्मा निर्मित होते। एकर बर देसी गाय प्राकृतिक कृषि के मूलाधार है। दूसर जिनिस के बात करी जोताई। प्राकृतिक कृषि में गहरा जोताई नहीं करे जावे, काबर यह भूमि के उपजाऊ शक्ति ला कम कर देते। 36 डिग्री तापमान होते तब भूया से कार्बन उठना शुरू हो जाते और ह्यूमस के निर्माण क्रिया रुक जाते, जेकर कारण भूमि के उपजाऊ शक्ति कम हो जाते। तीसर जिनिस के बात करी जल प्रबंधन। प्राकृतिक खेती में सिंचाई पौधा से कुछ दूरी में करे जाते। एमा मात्र 10% जल के ही उपयोग होते, जेकर से 90% जल के बचत हो जाते। पौधा ला कुछ दूरी से पानी दिए मा पौधा के जड़ के लंबाई बढ़ जाते, जड़ी मन के लंबाई बढ़े ले पौधा के तना के मोटाई बढ़ जाते। एक क्रिया से पौधा के लंबाई घलो बढ़ जाते, एकर परिणाम स्वरूप उत्पादन घलो बढ़ते। अगला जिनिस के बात करी पौधा के दिशा। प्राकृतिक खेती में पौधा के दिशा उत्तर दक्षिण होते, जेकर से पौधा ला सूर्य के प्रकाश ज्यादा समय तक मिलते। एक पौधा से दूसर पौधा की दूरी बढ़ाए जाए के कारण घलो पौधा ला ज्यादा मात्रा में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होते, जेकर से पौधा अपन शरीर के निर्माण करते। एकर से पौधा में कोनो प्रकार के कीट लगे की संभावना भी कम हो जाते। अब पौधा में पोषक तत्व घलो संतुलित मात्रा में संचित होते। पौधा के दिशा उत्तर दक्षिण होए से 20% तक उत्पादन बढ़ जाते। अगला जिनिस के बात करी प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के संग सहयोगी फसल के खेती घलो एक संग करे जाते, जेमा मुख्य फसल ला नत्रजन स्फूर पोटास जरूरत भर मिलत रही थे। सहयोगी फसल के जरई के तीर नत्रजन स्थिरक जीवाणु जैसे राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर आदि के मदद से पौधा के विकास होते। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के संग सहयोगी फसल लगाए से मुख्य फसल में कीट नियंत्रण घलाव संगे संग होते। आच्छादन के बात करी भूया के सतह के ऊपर फसल के अवशेष ला ढकना आच्छादन कहलाते, जेला हमन मल्चिंग के रूप में जानथन। कतको किसान भाई मन भांटा मिर्चा या अन्य जिनिस के फसल लेते ता पन्नी के आच्छादन करते, ओला मल्चिंग कहे जाते। कतको किसान भाई मन पैरा जिन बाचे पैरा होते ओला तोप देते ता बढ़िया काम हो जाते। एकर से पानी के बचत होते और भूया से कार्बन घलो नहीं उड़ावे, जेकर से भूया के उर्वरा शक्ति बढ़ते। आच्छादन हवा से नमी एकत्रित करते अब पौधा ला प्रदान करते। एकर से सूक्ष्म पर्यावरण के निर्माण होते और देसी केचुआ मन के गतिविधि खेत में बाढ़ जाते। देसी केचुआ अपन विष्ठा भूया का सतह में डालते। केचुआ के विष्ठा में सामान्य माटी से 7 गुना नत्रजन, 9 गुना स्फूर और 11 गुना पोटास ये सब जिनिस होते, जेकर से जल्दी ही भूमि सजीव होए लगते। ये तो हो इस प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटक के बात। आगू के अंक में बाचे घटक मन के बात करबो। तब राम राम, जय जोहार।
0: प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटक विषय पर जानकारी अभी आप सुन रहे थे खेती की बात में। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान।

एक बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:45 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन आलेख डॉक्टर राजेश टंडन का।
1: बड़े औद्योगिक व्यावसायिक राजनीतिक घराने से नहीं है या फिर आप किसी ऐसे परिवार से संबंधित नहीं है जो आप

0: कोर आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में बहुत कुछ छोड़ रहा हो तो आपको बहुत गंभीरता से अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने भी अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे जिसे मेहनत से पूरा कर आज वो शीर्ष पर हैं, धैर्य, लगन और मेहनत से। लक्ष्य ये नहीं है कि तय किया और भाग पड़े, ऐसा करेंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे। लक्ष्य तय करना ही तो पहला चरण है जिसे आत्मावलोकन किए बिना कभी निर्धारित नहीं करना चाहिए। जीवन में कोई भी लक्ष्य तय करने के पूर्व कुछ समय अपने आप को दें, आत्मावलोकन करें, इसलिए क्योंकि जितना हम अपने आप को समझ सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं। अपनी खूबियां, अपनी कमजोरी, अपने साधन, जिम्मेदारियां, जवाबदारियां और सबसे बड़ी बात, समय को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य तय किया जाए तो बेहतर है। लक्ष्य को हल्के में न लेकर या दिवा स्वप्न की तरह न रखें, बल्कि अपनी सीमाओं के अनुसार निर्धारित करें। लक्ष्य थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए। कहा जाता है अगर आप चांद पाने की कोशिश करेंगे तो लालटेन तो हाथ आ ही जाएगी, लेकिन अगर आप लालटेन ही पाने का लक्ष्य रखेंगे तो दिया सलाई भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगी। अब लक्ष्य एक बार तय हो गया तो हमें उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा। यही आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। सारी जवाबदारियां, दैनिक कार्यकलाप के अलावा हमको समय, संसाधन, संतुलन और दूरदृष्टि के साथ व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना होगा। कितना भी व्यस्त जीवन हो, सुख और दुख साथ लगे हों, मजबूरियां हों, संकट हों, लक्ष्य को कभी न भूलें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें अपनी ऊर्जा और क्षमता को दो भागों में विभक्त करना होगा। एक, लक्ष्य प्राप्त होने तक अपनी दिनचर्या के लिए, जिम्मेदारियों, जवाबदारियों के लिए, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अर्जुन ने भी अपने लक्ष्य को एक आंख बंद करके ही साधा होगा। शायद बंद आंख में जीवन में चल रही जद्दोजहद, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कहीं ना कहीं तो वे भी हावी रहे होंगे। अर्जुन ने एक आंख बंद करके निश्चित ही उन पर विजय हासिल की होगी और दूसरी आंख से लक्ष्य भेदन किया होगा। लक्ष्य को हमेशा जीवन की तरह सम्मान दें। लक्ष्य नहीं तो जीवन नहीं, और जीवन नहीं तो लक्ष्य नहीं। अक्सर पाया गया है कि लक्ष्य हासिल करते ही मनुष्य अहंकारी हो जाता है और ये दुर्गुण बहुत जल्द उसे वापस यथा स्थिति में पहुंचा देता है। खैर, ये बात तो तय है कि लक्ष्य को साधे बिना जीवन अधूरा है और जीवन ही लक्ष्य है। ये कहानी तो सुनी ही होगी कि एक भूखा कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा था। खरगोश जी जान से भागा, कुत्ता लेकिन ज्यादा तेज था। खरगोश को पत्थरों के बीच एक दरार दिखाई दी। उसने अपना लक्ष्य उस दरार तक पहुंचना बनाया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सेकंड के 10वें हिस्से के अंतर से खरगोश उस दरार में घुसने में सफल हो गया। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि दोनों एक दूसरे को देख तो सकते थे पर कुत्ता उसको पकड़ नहीं सकता था। हांफते हफरते कुत्ते ने खरगोश से पूछा, तू इतना तेज कैसे भाग लिया? खरगोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई तू लंच के लिए भाग रहा था और मैं लाइफ के लिए। लक्ष्य को लाइफ मानिए और दौड़ पड़िए। दुनिया की कोई ताकत आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक नहीं सकती।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। और कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, आज सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात, डॉक्टर के साथ संदर्भ त्वचा रोग। सुबह 7:10

प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ संदर्भ त्वचा रोग। सुबह 7:10 पर रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम। सदाबहार नगमे का समय होगा सुबह 7:40। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। आओ बच्चों, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00, जिसमें सामायिक चर्चा होगी ग्लोबल सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं मदर्स डे पर केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रम क्विज ऑल रेडियो। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे नए तराने और विविध भारतीय प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे सुबह 11:00। तो आपको एक बार फिर बता दें सुबह 7:30 पर आज आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ संदर्भ त्वचा रोग। इसके साथ ही सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम।

शाम की सभा में शाम 6:30 पर रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे कानून की बात, उत्तराधिकार अधिनियम विषय पर सुश्री मनीषा ठाकुर सस्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर से भेंट करता होंगे, विवेक पांडे प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, रिकॉर्डिंग सहयोग सौरभ केसरवानी का होगा। शाम 6:20 और शाम 7 आप सुनेंगे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम, ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा बिझा के उपचार और भंडारण जरूरी होते, फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम, आप मन के गीत आप सुनेंगे। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी और सामायिक सुझाव का। रात 8 आप सुनेंगे सुगम संगीत में नुसरत फतेह अली खान के गीत। रात 8:30 पर हम हाजिर होंगे आपके लिए लेकर रजनीगंधा की महक। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे 8:45 पर और रात 9 अंग्रेजी में समाचार। रात 9:15 पर हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:55 होने वाले हैं और समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः चतुश्शतोत्तर नवसहस्र कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां सप्तषष्ट्यधिक शत संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृतमहोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिमबंगालस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिमबंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतनसर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-उत्तर-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के

0: गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 7:05 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: हमेशा की तरह दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर के साथ, मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहरी सड़कों में, गांव की सड़कों में, यत्र तत्र सर्वत्र सभी प्रकार के वाहन अपनी स्वाभाविक गति में दौड़ रहे हैं। कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, विगत कुछ दिनों से शाम होते ही मौसम अपने तेवर दिखाने लगता है। लगभग प्रतिदिन कहीं न कहीं आंधी तूफान प्राय शाम के समय तांडव करने लगता है।

0: आंधी आते ही बिजली गुल हो जाती है, वर्षा भी होने लगती है। ऐसे में जो दो पहिया वाहन चला रहे होते हैं उनको खतरा अधिक होता है, वे अधिक परेशान होते हैं और ऐसे में वे जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए अपने वाहन की गति तेज कर लेते हैं। जबकि तेज आंधी तूफान से उड़ रहे धूल कचरे के आंखों में जाने से सड़क ठीक से दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, पानी की तेज बूंदे आंखों एवं चेहरों में पड़ने से तकलीफ होती है, जिससे बचने के लिए दोपहिया चालक अपना एक हाथ आंखों के सामने रखता है। सिर्फ एक हाथ से ही अपना वाहन चला रहा होता है, जो बेहद खतरनाक है। साथियों, रात के समय की आंधी से चार पहिया या अन्य वाहन वाले भी परेशान होते हैं। तेज तूफान बवंडर के चलने से सड़क स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यही स्थिति सामने से आ रहे वाहन चालक की भी होती है, तब आपस में ही इनके भिड़ने की आशंका बनी रहती है। आंधी तूफान से भारी वृक्ष या उसकी डगाल, टीन, टप्पर, पोस्टर, होर्डिंग, बिजली के पोल, तार एवं मोबाइल के केबल वायर टूटकर गिरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी गति में वाहन चलाते जा रहे हैं तो ये खतरे से खाली नहीं है। चलते वाहन के ऊपर भी वृक्ष, बिजली के पोल, होर्डिंग या बिजली के तार गिरने की आशंका बनी रहती है। अतः ध्यान रखें, जहां तक संभव हो आंधी तूफान की स्थिति में वाहन ना चलाएं। किसी भी सुरक्षित स्थान में रुक जाइए। हाँ, कभी भी वृक्ष के नीचे ना रुकें। आंधी तूफान पानी के शांत होने पर पूरी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि सड़क में बिजली के पोल, तरंगित तार या वृक्षों की डगाल गिरी हुई मिल सकती है। अतः पूरी सावधानी के साथ चलें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। लीजिए सुनिए कुछ संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर 7:10 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए रायपुर केंद्र से आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम।

देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिए। आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री विश्वास केलकर से की गई बातचीत, प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: आवाज का ये सफर 9 दशकों का साथी है, परिवर्तन का साक्षी है। आवाज का ये सफर कामयाबियों का गवाह है, फनकारों का हमनवा है। आवाज का ये सफर कल से आज तक निरंतर जारी है, आकाशवाणी को समर्पित अनेक सृजनकर्ताओं के संग, जिन्होंने रेडियो के कैनवास में भरे हैं कई खूबसूरत रंग। इन्हीं रंगों को अपने साथ लिए जन जन तक पहुंच रही है आकाशवाणी की ध्वनि तरंग। तो देश की वाणी आकाशवाणी में आज हम बांटने जा रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री विश्वास केलकर के अनुभव उन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: दीपक जी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन।
0: विश्वास केलकर जी, ये जो नाम है ये आकाशवाणी के किसी एक केंद्र से नहीं बल्कि अनेक केंद्रों से इस नाम को हमारे श्रोताओं ने सुना है। ये नाम किसी जमाने में आकाशवाणी रायपुर से भी सुनाई देता था। तो विश्वास जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी से आपकी ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है?
1: ये यात्रा शुरुआत कहाँ से हुई, उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं इस यात्रा पर आया कैसे। देखिए, आकाशवाणी में आने से पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में संगीत शिक्षक के तौर पर कार्य करता था
0: जी।
1: मेरी माताजी श्रीमती कमल केलकर, जो कि रायपुर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग उनको अच्छे से जानते हैं, एक सुप्रसिद्ध गायिका थी
0: जी।
1: तो मेरी माताजी की एक शिष्या थी रमा दीदी। रमा दीदी से मेरी माताजी ने कहा कि मेरे बेटे के लिए कभी कोई अच्छी नौकरी की पोस्ट निकले तो बताना। उन्होंने ये बात उनकी बड़ी बहन रेखा दीदी से कही
0: जी।
1: और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जब यूपीएससी से पोस्ट निकली तो फॉर्म रमा दीदी के माध्यम से मेरी माताजी तक पहुंचा दिया।
0: क्या बात,
1: आप जानते हैं कि रेखा दीदी उस समय आकाशवाणी रायपुर में ही कार्यरत थी। उसके बाद 24 जून 1991 को आकाशवाणी बीकानेर में मैंने कार्यक्रम अधिकारी का पदभार ग्रहण किया और 30 ग्यारह 2023 को आकाशवाणी भोपाल से सहायक निदेशक कार्यक्रम के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच मैंने नागौर, रीवा, रायपुर, अयोध्या, इंदौर, कोटा और भोपाल जैसे आकाशवाणी केंद्रों पर अपनी सेवाएं दी
0: जी। केलकर साहब, आपने चंद मिनटों में इतनी लंबी यात्रा का वृत्तांत हमारे श्रोताओं को सुनवाया। अब अगर हम आकाशवाणी के प्रति आपकी अपनी रुचि की बात करें तो ये जो रुचि है इसका सबसे बड़ा आधार क्या रहा है?
1: देखिए, बचपन से ही आकाशवाणी हमारे घर में सुना जाता था। 5-55 से हमारा रेडियो जो है 5-55 से लग जाता था, बल्कि संकेत ध्वनि से हमारा रेडियो हमारे घर शुरू हो जाता था
0: जी।
1: उसमें जो भजन आते थे वो इतने अच्छे आते थे कि मेरे ख्याल से हमारे घर के जितने सदस्य थे सभी उसको सुना करते थे। और उस समय आकाशवाणी रायपुर से चिंतन रायपुर से नहीं आता था, आकाशवाणी भोपाल से उसका प्रसारण होता था
0: जी।
1: और वो चिंतन हम लोग सुना करते थे, रामचरितमानस होता था उसको भी हम लोग सुना करते थे, और आकाशवाणी रायपुर से शास्त्रीय संगीत के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसको भी हम लोग सुना करते थे। तो धीरे धीरे धीरे धीरे आकाशवाणी के प्रति मेरी जो है रुचि बढ़ती चली गई। हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि मैंने ये विचार नहीं किया था कि मैं कभी आकाशवाणी में नौकरी भी करूंगा
0: जी,
1: क्योंकि उस समय ऐसे बचपन में ऐसा मालूम ही नहीं था कि आकाशवाणी में नौकरी कैसे करते हैं, क्या कैसे की जाएगी या मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। मैं तो क्योंकि मेरे माता पिता जी दोनों गाने वाले थे, मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ करूं।
0: आपने संगीत में क्या क्या सीखा है?
1: संगीत में देखिए, वैसे तो मैंने डिग्री के तौर पर आप बोलेंगे तो एमए की शिक्षा डिग्री मैंने प्राप्त की है ख्याल गायन में। एमए मैंने किया प्रागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से, बीम्यूज भी मैंने किया था, उसके बाद मैंने एमए किया वहां से
0: जी।
1: लेकिन ये तो खैर डिग्री की बात अलग है, लेकिन बचपन से जब मेरी आंख खुलती थी तब मेरी माता जी उस समय 5:30-5:15 बजे से गाना शुरू कर देती थी और मैं उसको सुना करता था। 5 बजे से मेरी माता जी का गायन शुरू होता था, 6:45 तक मेरी माता जी का गायन समाप्त हो जाया करता था
0: जी।
1: तो बचपन से ही संगीत के स्वर मेरे कानों में, तानपुरी के स्वर मेरे कानों में पड़ते थे, तो स्वाभाविक रूप से मेरे में संगीत की रुचि उत्पन्न हुई। और आप जानते हैं कि मेरे नाना जी पद्म भूषण पंडित विनायक राव पटवर्धन
0: जी,
1: ये मेरे नाना जी।
0: क्या बात,
1: संगीत को कह सकता हूँ कि मतलब विरासत में ही मुझको संगीत एक तरह से प्राप्त हुआ।
0: चूंकि आपने बताया कि संगीत आपको विरासत में मिला और आकाशवाणी के प्रसारण का एक बहुत बड़ा हिस्सा संगीत है, उसमें शास्त्रीय संगीत का खास मुकाम है और आप चूंकि शास्त्रीय संगीत से जुड़े रहे हैं बचपन से ही।

0: भी संगीत का वातावरण आपको मिला है और आपने संगीत सीखा भी है। आकाशवाणी की अगर आपकी संपूर्ण यात्रा की बात की जाए तो क्या इसमें संगीत के ही क्षेत्र में आपका दखल रहा है या उसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी आप जुड़े रहे?
1: देखिए, मूलतः तो मैं ये भाग्यशाली रहा मैं कि मैं मेरा जो सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी से कार्यक्रम अधिकारी संगीत के तौर पर हुआ था
0: जी।
1: और लगभग सभी आकाशवाणी केंद्रों में मेरे पास संगीत का कार्यक्रम रहा। ये अलग बात है कि कुछ केंद्रों पर मुझे और दूसरे कार्यक्रम भी मिले और मैंने अपने बुद्धि के अनुसार जैसा भी मैं कर सकता था वैसे वो काम मैंने पूर्ण किया। जैसे कि आकाशवाणी फैजाबाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4.5 वर्षों तक मैंने खेल खिलाड़ी एक कार्यक्रम होता था वहां पर जो रात को रविवार को 8 से 8:20 तक हुआ करता था
0: जी।
1: तो मैं उस कार्यक्रम को सजीव प्रसारित करने के लिए रात को 8 बजे आकाशवाणी अयोध्या फैजाबाद जो कि आप अयोध्या के नाम से जाना जाता है
0: जी,
1: उस समय जाता था और वहां एक उद्घोषक होते थे, कोई ना कोई उद्घोषक कार्यरत होते थे, उनके साथ मिलकर मैं ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया करता था। तो इस कार्यक्रम की मैं आपको एक दिलचस्प घटना बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के लोगों को अपने समय के प्रति कितना प्रतिबद्ध रहना पड़ता है। आप तो खैर बहुत अच्छे से उस बात को जानते हैं
0: जी।
1: एक बार क्या हुआ कि मुझको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पे पंचकोसी परिक्रमा होती है। पंचकोसी परिक्रमा अयोध्या में होती है मुझको जानकारी थी, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि आकाशवाणी अयोध्या का जो रास्ता है उस रास्ते से ही वो पंचकोसी परिक्रमा का रास्ता भी जाता है
0: जी।
1: मेरी एक आदत थी कि 8 बजे का कार्यक्रम है तो मैं 15-20 मिनट पहले वहां आकाशवाणी में पहुंच जाया करता था। उस दिन भी मैं वहां पहुंचा और जैसे ही आकाशवाणी के पास में पहुंचा तो इतनी भीड़ ज्यादा थी तो मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने स्कूटर एक जगह खड़ी की और आप विश्वास नहीं करेंगे 500 मीटर का रास्ता मुझको पैदल जाने में करीब 15-17 मिनट लग गए। लेकिन चूंकि मैं 15-20 मिनट अपने हाथ में लेके चलता था तो 8 बजने को जब 1 या 2 मिनट कम थे मैं स्टूडियो में पहुंच गया और वो कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया।
0: क्या बात, क्या बात। केलकर साहब, इस तरह की रोमांचक घटनाएं रेडियो से जुड़े लोगों के जीवन में अक्सर घटी हैं। आपका चूंकि बचपन रायपुर से जुड़ा रहा है और रायपुर से ही आपका परिवार भी जुड़ा रहा है, आकाशवाणी रायपुर में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, अगर हम रायपुर की स्मृतियों को आपके मानस पटल में जो अंकित हैं उन पन्नों को पलटना चाहें तो वो कौन कौन सी यादें हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी की तो रायपुर की तो इतनी यादें हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं और आप लोगों का इतना स्नेह मुझको मिला है कि मैं उसको अपने जीवन भर कभी नहीं भूल सकता, इसमें कोई दो मत नहीं। तो देखिए, आकाशवाणी रायपुर में जब मैं रीवा से स्थानांतरित होकर आकाशवाणी रायपुर पहुंचा
0: जी,
1: तो वहां पर माननीय ममता चंद्राकर मैडम उस समय सहायक निदेशक थी
0: जी,
1: और वहां पे जितने लोग थे वो लगभग सभी लोग मुझको जानते थे कि ये संगीत परिवार से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझको कहा कि आप संगीत रचनाएं की जब आवश्यकता हो तो आप इस मास का गीत कार्यक्रम होता था, आपको याद होगा
0: बिल्कुल जी जी,
1: है ना, उस इस बात का गीत को जो कार्यक्रम होता था उसमें आपने भी अपने आवाज दी है मेरे एक गीत में
0: जी जी,
1: पहले उसको अपन पठन करते थे उसके बाद वो गीत होता था, प्रसारित होता था
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें से मैंने इस मास का गीत के लिए संगीत दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथी भी वहां पर थे, मेरे परम मित्र थे संजय पांडे
0: जी,
1: एक और मेरे बचपन के मित्र थे राजेश फाइन और मेरे गुरुदेव के लड़के समीर शुक्ला
0: जी,
1: और वहां पर जो उस समय मेरे साथ तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत थे आदरणीय रामाने जी, आदरणीय वरखड़े जी। तो विज्ञापन जब काम होता था तो उसमें गीत बनाए जाते थे विज्ञापन के, जैसे विज्ञापन के कोई उनको एक वो सीरियल मिला इसके आपको 12-7 एपिसोड करने तैयार करने हैं
0: जी, प्रायोजित कार्यक्रम के,
1: प्रायोजित कार्यक्रम जी, हाँ जी हाँ
0: जी जी।
1: तो उसका एक आपको मालूम है कि उसका एक शीर्षक गीत हुआ करता था जिसको अपने को आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से उसको तैयार किया जाता था,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। कई सारे गीत मैंने तैयार किए लेकिन एक गीत का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा
0: जी,
1: वो गीत था आओ आशा दीप जलाएं, कुष्ठ रोग पे एक कार्यक्रम
0: बिल्कुल
1: 13 एपिसोड का कार्यक्रम वो करना था, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर बनाया जाना था, आकाशवाणी रायपुर के द्वारा इसकी निर्मित की जानी चाहिए थी। तो समीर शुक्ला ने मुझको बताई ये बात बताई थी कि वहां के जो एक IAS अधिकारी थे उन्होंने समीर जिसे कहा कि ये जो कुष्ठ रोग का कार्यक्रम है
0: जी,
1: इसके लिए जो शीर्षक गीत होगा उसको आप लोग ऐसा कीजिए कि मुंबई से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आकाशवाणी रायपुर को मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी अच्छे लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और इतने अच्छे रिकॉर्डिंग की सुविधा यहाँ पर है कि आप उस गीत को बना सकें। तो समीर ने कहा कि सर हम प्रयास करते हैं और आपको यदि लगा कि हम ठीक हैं तो आप उनको आगे मौका दीजिएगा, नहीं तो फिर आप जैसा बोलते हैं वैसा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये बात आके समीर ने मुझको आके बताई। अब भगवत कृपा से मैंने कहा यार समीर ये तो अपने लिए

0: आकाशवाणी रायपुर के लिए भी एक खुला चैलेंज है, मतलब एक पर इसको अपने को किसी भी तरह से पूर्ण करना है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात उस समय ये थी कि मैं रायपुर में पोस्टेड था, मेरे माता पिताजी बुढ़ापारा में ही रहते थे, आपको मालूम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो शबीर ने जब मुझको एक गीत दिया तो मैंने गीत की जब संगीत रचना अपने घर में बैठ कर की, उसके बाद माता पिता को लाकर सुनाई, तो उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कहा कि ऐसे ऐसे परिवर्तन करो। और आपको यदि याद होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने किसी और राग में इस गीत की रचना की थी
1: जी,
0: उस समय आप भी बैठे थे वहां पर और रमानी साहब भी वहां पर थे, उनको मैं सुना रहा था ये गीत
1: जी जी।
0: तो आपने एक पॉइंट आउट किया था जिसको मैंने मान लिया, आपने कहा था कि इस गाने की धुन तो जो है सांझ ढले गगन तले से कुछ उसकी साम्यता हो रही है
1: जी जी।
0: मैंने कहा ठीक है, मैं इसका एक स्वर जो है वो एक स्वर अलग कर देता हूँ, और उसके बाद अगले दिन लाके मैंने दूसरे तरीके से इसकी स्वर रचना की
1: जी।
0: और फिर उसके बाद मेरे माता पिता को सुनाया, उन्होंने पास किया। फिर रमानी जी कान के बहुत अच्छे हैं, वो उसको पहले मैं सुनाया करता था, तो वो बोलते थे हाँ खेलकर ये ठीक है, अपन इसको अपन कर सकते हैं। और उसके बाद आप भी वहां पर, दूसरी बार भी आप वहां पर थे, तो मैंने कहा और दीपक जी बताइए अब कैसा लग रहा है, तो बोले नहीं सर अब तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है
1: जी जी।
0: तो मैं वो गीत थोड़ा सा आपको यहाँ पर गा के गुनगुना
1: बिल्कुल स्वागत है सर, स्वागत है बिल्कुल।
0: मैं गायक नहीं हूँ मैं,
1: प्लीज प्लीज सर,
0: लेकिन जैसा भी मुझको बन पड़े मैं सुनाना चाहता हूँ।
1: स्वागत है सर, स्वागत।

0: ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ तो समीर जी ने क्या किया, एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की
1: जी।
0: उन अधिकारी का फोन आया कि क्या हुआ इस गीत के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये गीत जो है सर तैयार हो गया है। बोला अच्छा आपने तैयार कर लिया, चलिए अच्छी बात है, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि आपको इसको मुंबई में तैयार करवाना चाहिए करके, आपने करवा लिया अच्छी बात है
1: जी।
0: वो आए और समीर ने क्या किया उनको स्टूडियो में बैठाया और स्पीकर पे उनको बड़े स्पीकर पे अपने जो होते हैं ना स्पीकर होते हैं ना बड़े स्पीकर
1: जी जी जी जी
0: उससे उनको सुनाया। तो सुनाने के बाद उनको ये गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि समीर जी देखो मैं तो आपसे पहले ही कहना था कि ये आपके बस की बात नहीं है, आपने अच्छा किया कि उसको आकाशवाणी मुंबई से इसको तैयार करवा लिया
1: जी।
0: तो सुनने के बाद समीर उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और उनको बताया कि नहीं सर ये गाना मैं आपको बताऊं कि ये गाना हमारे केंद्र पर ही रिकॉर्ड किया गया है।
1: अच्छा
0: तो ये सुन के वो बोले कि ये गाना आपके केंद्र पर रिकॉर्ड किया
1: जी,
0: गया है।
1: जी जी जी।
0: तो बोले जब आपने एक शीर्षक गीत के लिए इतनी मेहनत की है
1: जी
0: और ये पूरा 13 एपिसोड का जो ये जो है ये आप ही बनाएंगे।
1: क्या बात क्या बात।
0: उसको बहुत खुशी की मेरे जो अपने गुरुओं से मैंने जो संगीत सीखा उसका कुछ उपयोग मैं आकाशवाणी रायपुर के लिए कर सका और आकाशवाणी रायपुर को विज्ञापन में अपना कुछ योगदान में दे सका।
1: क्या बात। इसके अलावा अगर आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों की आपकी संपूर्ण यात्रा की बात करें तो उपलब्धि पूर्ण आपके कार्यों में किन किन कार्यों को आप और याद करना चाहेंगे?
0: तो आकाशवाणी इंदौर का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा
1: जी।
0: आकाशवाणी इंदौर में मेरे लिए सबसे बड़ा जो यादगार का पल था वो था जनवरी 2018 में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन
1: जी।
0: अब दीपक जी आप जानते हैं कि इसमें देश भर के 22 भाषाओं के अलग अलग कवि और उनके अनुवाद करने वाले 22 लोग भी आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और आकाशवाणी महानिदेशालय से भी इसमें हमारे अधिकारी जो है वो आते हैं देखने के लिए कि ये कार्यक्रम कैसे किया जा रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत बड़ा आयोजन था। ये कार्यक्रम इतना सफल रहा था दीपक जी कि इसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको उसी कार्यक्रम के माध्यम से इसको सम्मिलित किया गया।
1: क्या बात।
0: और आकाशवाणी को एक सर्टिफिकेट दिया गया और ये संस्था जो है लंदन की संस्था है दीपक जी मैं आपको बताऊं
1: जी।
0: उन्होंने चलते कार्यक्रम में एक गुवाहाटी के रिटायर्ड जज थे वो आए हुए थे, उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट आकाशवाणी इंदौर में राजशेखर जी को सौंपा।
1: क्या बात।
0: वो उन्होंने ले जाके दूसरे दिन डीजी को सौंपा। मैं चूंकि संगीत से जुड़ा रहा हूँ इससे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पर मैं आकाशवाणी इंदौर में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर कार्य करने गया तो वहां पे कुछ वरिष्ठ कलाकार मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हम लोग ए ग्रेड में रहते हैं, हम लोग को करीब करीब किसी को 10 साल हो गए थे, किसी को 15 साल हो गए थे
1: जी।
0: लेकिन अभी भी अखिल भारतीय संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं शनिवार और रविवार को अपने कार्यक्रम होते थे आपको मालूम है
1: जी जी जी,
0: उसमें हमारा प्रसारण नहीं हुआ है। तो फिर मैंने ऐसे सभी कलाकारों की लिस्ट बनाई और आकाशवाणी महानिदेशालय में पत्र लिखा कि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, यदि इनका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होता है तो ये न सिर्फ आकाशवाणी इंदौर के लिए बल्कि आकाशवाणी दिल्ली के लिए भी गर्व की बात होगी।

0: प्रसारण सभी लोग देश भर में सुन सके।
1: बिल्कुल जी जी।
0: और दीपक जी, मेरे को बताने में बहुत खुशी होती है कि मेरी चिट्ठी गई और मैंने जितने कलाकारों के नाम लिखे थे
1: जी,
0: तो उस वर्ष हमने 10 कलाकारों की इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद जो सिलसिला चला तो फिर आकाशवाणी इंदौर इस मामले में शायद मेरे ख्याल से जब तक मैं था कभी पीछे पलट के नहीं देखा। प्रत्येक वर्ष 4 या 5 या 3 या 4 कलाकारों के नाम आते थे और उनका प्रसारण वहां से होता था।
1: आप कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर, सहायक निदेशक के तौर पर आकाशवाणी भोपाल में रहे हैं और वहीं से आपने आकाशवाणी को अलविदा कहा, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब कोई व्यक्ति कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर किसी केंद्र को चलाते हैं, तो आपको कैसा लग रहा था भोपाल में?
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कार्यक्रम प्रमुख के तौर पर किसी केंद्र को चलाना वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और सबसे ज्यादा कार्य मैंने आकाशवाणी भोपाल में किया, ये भी मैं आपको बताऊं
1: जी।
0: सौभाग्य से उस समय ऐसा था कि मेरे ऊपर 19 केंद्रों का भार भी था, उस समय दिया गया था मुझको प्रभार दिया गया था छत्तीसगढ़ और आकाशवाणी के मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों का
1: जी
0: प्रभार मुझको सौंपा गया था, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन वहां का जो स्टाफ था इतने अच्छे लोग वहां पर थे कि उनके सहयोग से मुझको पता ही नहीं चला कि मैंने वहां पर अपने 5 साल 7-8 महीने जो भी मेरा कार्यकाल था वो कैसे वहां मैंने बिताया और किस तरह से वो संपन्न हुआ। एसपी सिंह साहब थे वहां पर, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, अत्यंत अनुभवी कार्यक्रम निष्पादक थे, और जब कभी महानिदेशालय से कभी इस तरह की परिस्थिति आती थी तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। और एक इनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, राकेश ढोंडियाल कार्यक्रम निष्पादक के पद पर थे वो, लेकिन वो इतने होशियार कार्यक्रम निष्पादक थे कि उनका रूपक जो उनको बनाए जाते थे अद्वितीय होते थे, उनको इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार भी मिले थे, आप जानते होंगे इस बात को, और आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार के कई पुरस्कार श्री राकेश ढोंडियाल जी को प्राप्त हुए थे। तो मेरे लिए गर्व की बात रही कि ऐसे लोगों के साथ उसको आकाशवाणी भोपाल में कार्य करने का मौका मिला।
1: केलकर साहब, मन तो कर रहा है कि आपसे और भी बहुत सारी बातें करें, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की सीमा हमसे यही कह रही है कि अंत में आपके जीवन में आकाशवाणी का जो योगदान रहा है उसे आप किन शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे?
0: देखिए, आकाशवाणी जैसी संस्था में अपनी सेवाएं देना ये अत्यंत गरिमामय और गर्व की बात होती है दीपक जी, और मुझे अहोभाग्य ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं अपने सद्गुरु जो मेरे लिए साक्षात परम पिता परमेश्वर ही हैं, श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज की परम कृपा, मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे शुभ चिंतक मित्रगण और मेरे सभी कार्यालयीन सहयोगियों के सहयोग से मैं ये अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर सका, इसका मुझे संतोष है और मैं इसके लिए अपने ईश्वर सहित सबका आभारी हूँ।
1: सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में केलकर जी का समय किस तरह से बीत रहा है?
0: देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है घर के जो काम होते हैं वो करना होता है, और संगीत तो मेरे खून में है, तो आजकल यूट्यूब और इतनी इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं अपने पास कि आराम से आप उन सबको सुन सकते हैं। दिनचर्या के बारे में आपको मैं क्या कहूँ, जैसे सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा बाहर पैदल टहल कर आ जाता हूँ, आने के बाद थोड़ा प्राणायाम कर लेना, और कभी कभी मैं आकाशवाणी भोपाल का एक कार्यक्रम होता है नमस्कार भोपाल
1: जी,
0: तो टहल कर आने में यदि 7:20, 7:30 हो जाते हैं तो कभी कभी उस कार्यक्रम को भी मैं लगा लिया करता हूँ, और या किसी अन्य आकाशवाणी केंद्र में कभी कोई कार्यक्रम अच्छा चल रहा हो तो उस कार्यक्रम को भी सुन लेता हूँ। और फिर घर के कुछ काम है, जैसे नवी मुंबई में खारघर करके एक स्थान है, वहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं
1: जी। तो केलकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि यूं ही आपका जीवन मनोरंजन के साथ बीते, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामना है। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देश की वाणी आकाशवाणी में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री विश्वास केलकर से की गई बातचीत। प्रस्तुतकर्ता थी दीपक हटवार।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे से बातचीत।

0: भेंटकर्ता महावीर बरगा।
1: सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पांडे सर। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, गुप्त रोग और कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ हैं। इनसे त्वचा संबंधी बीमारियों को बहुत करीब से जानेंगे और उसके छुटकारा पाने के उपायों को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सीधे हम प्रश्न पे आते हैं ताकि हम आपका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, आपकी जानकारियों का लाभ हम अपने श्रोताओं तक बांट सकें। त्वचा संबंधी बात आती है तो कुछ चकते या दाग या खासकर सफेद दाग अक्सर देखने को मिलते हैं, ये है क्या?
2: देखिए, चेहरे या शरीर पे हमें जो सफेद दाग देखने को मिलते हैं, जरूरी नहीं कि वो विटिलिगो ही हो, लेकिन जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही चमड़ी का हर हल्का रंग या दूध जैसे दिखने वाला या सफेद दिखने वाली चमड़ी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा नहीं होती।
1: अच्छा,
2: वो कुछ फंगल इन्फेक्शन के कारण भी वैसा हो सकता है, वो चोट के कारण भी हो सकता है, वो उम्र के कारण भी हो सकता है, वो एक तिल भी हो सकता है।
1: अच्छा,
2: तो यदि आपको शरीर पे कहीं सफेद दाग दिखता है तो डरिए नहीं, आप चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलिए और उसे डिसाइड करने दीजिए कि ये सफेद दाग है कि नहीं, है ना
1: जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये होता क्यों है?
2: ल्यूकोडर्मा एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें मेलानोसाइट जो त्वचा को रंग बनाकर देती है नष्ट होने लगती है। इससे त्वचा पर सफेद पैचेस बनने लगते हैं। ये कंटाजियस बिल्कुल नहीं होती और छूने से बिल्कुल नहीं फैलती।
1: अच्छा,
2: तो और इसे मैं सरल करूं तो भगवान ने हम सबको रोग प्रतिरोधक क्षमता दी हुई है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हमारे शरीर की रंग बनाने वाली कोशिकाओं को मारने लगती है
1: जी,
2: तो रंग बनना कम होता है, बंद होता है और फिर चमड़ी सफेद दिखने लगती है
1: जी।
2: इसी को हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं।
1: आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी जो त्वचा के रंग है उससे कुछ अलग दाग, जो पूर्ण सफेद दाग भी नहीं रहते हैं, तो ये क्या अलग अलग हैं या इसके कुछ प्रकार भी होते हैं?
2: जी हाँ, जो ल्यूकोडर्मा है वो दुधिया सफेद होता है।
1: हाँ,
2: और यदि ट्रीटमेंट न लिया जाए तो ये साइज और संख्या में बढ़ता चला जाता है। जबकि सफेद दाग जैसे ही दिखने वाले हल्के रंग के, जो फंगल इन्फेक्शन में, हमको चोट में, हमको सनबर्न में और थायराइड डिसऑर्डर और एमालाइडोसिस, इस तरह की कुछ बीमारियों में भी हमको देखने को मिल सकता है। खासतौर से बच्चों की बात करें तो हमको धूप की एलर्जी के कारण और फंगल के इन्फेक्शन के कारण हमको चेहरे में अक्सर ल्यूकोडर्मा से मिलते जुलते हल्के रंग के दाग मुंह के आसपास देखने को मिलते हैं।
1: इसके शुरुआती लक्षण हम उसी को माने कि मुंह के पास दिखते
2: हैं। यदि हम ल्यूकोडर्मा कह रहे हैं तो ये कहीं भी आ सकता है।
1: हाँ,
2: इसके लिए कोई जगह विशेष नहीं होती और इसमें न दर्द होता है न खुजली होती है।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: तो क्या इस सफेद दाग का इलाज संभव है?
2: हाँ, बिल्कुल संभव है। मैं आपके माध्यम से उसको क्लियर करना चाहता हूँ। सफेद दाग जितनी शुरुआती अवस्था में आप उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं उतना ही जल्दी उतनी ही कम दवा में वो ठीक हो जाता है। यदि आप सफेद दाग का ट्रीटमेंट लेट में या ज्यादा उम्र में चालू करेंगे तो ज्यादा दवाइयों और ज्यादा समय लेकर ठीक होता है। सारे सफेद दाग दवाइयों से ठीक नहीं होते, लेकिन हाँ, 70-80% सफेद दाग ठीक हो जाते हैं, बशर्ते उसका सही ट्रीटमेंट विशेषज्ञ के निरीक्षण में लिया गया हो।
1: श्रोताओं, हम बता दें हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पांडे, आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर साहब, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सफेद दाग के बारे में और उसकी तुलना कई बार कुष्ठ रोग से होती है, तो क्या एक है या अलग है?
2: दोनों में दूर दूर तक कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन आपका ये जो प्रश्न है वो पता नहीं क्यों क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अक्सर ये समस्या लेकर आते हैं।
1: हाँ,
2: सफेद दाग में ना तो खुजली होती है, ना तो दर्द होता है, ना तो सेंसेशन इम्पेयर्ड होते हैं।
1: अच्छा,
2: सिर्फ और सिर्फ त्वचा का रंग बदलता है, बाकी सारी चीजें पूरी तरीके से सामान्य रहती हैं। जैसे आप छुएंगे तो बिल्कुल वैसा ही पता चलेगा, जबकि कुष्ठ में चमड़ी में सुन्नपन आ जाता है। अब लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि सफेद दाग में ना चमड़ी का रंग हल्का होता है और फिर दूधिया होता है। कुष्ठ में चमड़ी का रंग हल्का होता है और हल्का ही रहता है, सफेद नहीं होता।
1: अच्छा,
2: तो इसलिए शुरुआती जो कुष्ठ है और शुरुआती ल्यूकोडर्मा है उसमें दोनों में चूंकि चमड़ी का रंग हल्का पड़ा रहता है, इसलिए कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है।
1: उपचार यदि त्वरित हो तो क्या उसका लाभ बेहतर मिलता है?
2: सारी बीमारियों में, न सिर्फ ल्यूकोडर्मा बल्कि सारी बीमारियों में,
1: हाँ,
2: सही समय

0: पे यदि इलाज लिया जाए तो कम दवाइयों से और कम समय में बेहतर लाभ प्राप्त होता है।
1: जी, और क्या ये खतरनाक बीमारी है, क्या कहें इसे?
0: जी बिल्कुल नहीं, ल्यूकोडर्मा सिर्फ एक त्वचा के रंग का बदलाव है, या यूं कह ले कि ये इसको बीमारी ही नहीं कहना चाहिए,
1: अच्छा।
0: क्योंकि इससे आपकी मानसिक, शारीरिक और प्रजनन
1: जी
0: किसी भी क्षमता में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बुरा सोशल स्टिग्मा है,
1: जी
0: और कई बार जो है लोग हमारे पास आते हैं कि उनकी शादी तय हो गई है, फलानी की फैमिली में सफेद दाग है, हम शादी करें कि नहीं करें। हम उनको बार बार समझाते हैं
1: जी
0: कि आप इसको सोच रहे हैं कि सफेद दाग एक बीमारी है, तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी बीमारी तो बीपी, शुगर, सिकल सेल एनीमिया है। पहले आप उसको देखिए कि सामने
1: अच्छा
0: वाले
1: जी
0: को कहीं बीपी तो नहीं है, कहीं घर
1: हाँ
0: के सामने वाले के घर में
1: हाँ हाँ
0: माता जी को, पिताजी को बीपी,
1: जी
0: शुगर तो नहीं है, क्योंकि वो जरूर आपकी जान ले लेगा। सफेद दाग कभी आपकी जान नहीं लेगा।
1: अच्छा
0: हाँ, तो सफेद दाग के लिए जीवन संगिनी का चयन करते समय इस तरह की बातों पे न जाए।
1: जी, बहुत सी दुविधाओं का समाधान आपके माध्यम से हो रहा है। हम जानना चाहेंगे कि किसी को भी ये सफेद दाग से समस्या है तो किन चीजों से बचना चाहिए?
0: जैसा हमने पहले बताया कि सन एक्सपोजर यदि होता है, ज्यादा होता है, तो वो
1: जी
0: भी सफेद दाग खुद करा सकता है, मीन्स अलग
1: अच्छा
0: तरह का रिएक्शन
1: हाँ
0: पैटर्न पे,
1: जी
0: तो उससे बचना चाहिए। चोट से बचना चाहिए, किसी
1: हाँ
0: भी तरह की चोट जो है वो नए सफेद दाग बना देती है। यदि किसी को ऑलरेडी सफेद दाग है तो इसको हम लोग मेडिकल भाषा में कोबनर्स फिनामिना कहते हैं।
1: अच्छा
0: हार्श केमिकल एक चोट की तरह का काम करते हैं, तो उससे भी बचना
1: बचना चाहिए
0: चाहिए,
1: जी
0: है
1: हाँ
0: ना। स्ट्रेस चमड़ी की लगभग सभी बीमारियों को बढ़ाता है, इसलिए मानसिक तनाव से बचना चाहिए। इसके लिए आप अपने रूटीन में योगाभ्यास
1: जी
0: शामिल करें,
1: अच्छा
0: है ना, और अनवेरीफाइड होम रेमेडीज से बचें। अक्सर उसमें हार्श केमिकल मिला रहता है ना, और वो आपकी बीमारी को बढ़ा देता है
1: जी
0: या एलर्जी करा देता
1: जी
0: है।
1: हाँ तो ये तो बचाव की बात हो गई है। और हम अपनी दिनचर्या की बात करें तो किस तरह के लाइफ स्टाइल होने चाहिए या जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हाँ
0: हमें रेगुलर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, स्किन का जेंटल केयर करना चाहिए,
1: जी
0: जैसा आप बताया कि स्ट्रेस को कम करने
1: जी
0: के
1: हाँ
0: बारे में सोचना चाहिए,
1: हाँ हाँ
0: है ना। डाइट हमारी हेल्दी होनी चाहिए, है ना, और शुरुआती अवस्था में ही हमको डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लेना चाहिए, है
1: जी
0: ना।
1: हम यदि उम्र की बात करें तो क्या ये बच्चों में भी ये समस्या होती है?
0: विटिलिगो किसी भी उम्र में और किसी भी व्यक्ति को हो सकती है।
1: जी
0: अब चूंकि अवेयरनेस अच्छी आ गई है, चर्म रोग विशेषज्ञता, डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छी हो गई, तो हम देख रहे हैं कि वयस्कों की तुलना में बच्चों में हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है।
1: अच्छा
0: बच्चों की चमड़ी नाजुक होने के कारण हर छोटी चीज से रिएक्ट कर जाती है, जबकि बड़े की चमड़ी में इम्यून सिस्टम एक डेवलप हो चुका रहता है, इसलिए उनकी चमड़ी थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करती है, रोक लेती है।
1: जी क्या ये अनुवांशिक भी होता है?
0: बिल्कुल होता है। जो इंडियन स्टडी है उसके हिसाब से 2 से 4% इंडिया में
1: जी
0: जो है वो ये अनुवांशिक होता है। और बल्कि यदि सरल शब्दों में कहूं तो यदि किसी के माता पिता को सफेद दाग है तो बच्चे को सफेद दाग होने का चांस 5% है
1: अच्छा
0: इंडियन कॉन्स्टेक्ट में।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वाले साथियों को। कोई ऐसा संदेश आप बताना चाहेंगे जिससे कि इससे भ्रांति से बचें, लोग घबराएं नहीं खासकर?
0: मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि सफेद दाग एक स्टिग्मा है, बीमारी नहीं है।
1: जी
0: इससे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और प्रजनन क्षमता पे
1: जी
0: किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और इसलिए जीवन में बड़े निर्णय लेते समय सफेद दाग किसी को है इस बात को इग्नोर करें। ये फैलता नहीं है, छूने से नहीं फैलता, साथ रहने से नहीं फैलता, हस्बैंड से वाइफ को नहीं फैलता,
1: हाँ
0: तो कार्यस्थल पे किसी प्रकार की अस्पृश्यता का भाव न रखें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर जानकारी के लिए। सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।
2: प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ अभी आप सुन रहे थे। डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ से ये बातचीत थी भेंटकर्ता महावीर बरगा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे।

श्रोताओं, आज का दिन दुनिया भर में मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माँ के त्याग, समर्पण, बलिदान को समर्पित है यह दिन।

माँ एक ऐसा अनमोल रिश्ता जिसकी तुलना इस संसार के किसी भी संबंध से नहीं की जा सकती। एक ऐसा रिश्ता जो जन्म से पहले ही जुड़ जाता है। एक ऐसा स्नेह जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा और बिना किसी सीमा के जीवन भर हमारे साथ चलता है। आज का दिन केवल एक औपचारिक अवसर नहीं, बल्कि उस ममता, त्याग, संघर्ष और अथाह प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है जिसने हमारे जीवन को आकार दिया।

जब एक शिशु इस संसार में आता है तब वह शब्दों से अनजान होता है, लेकिन माँ उसकी हर धड़कन को समझ लेती है। उसकी पहली मुस्कान पर सबसे पहले जो चेहरा खिल उठता है वह माँ का होता है। उसकी पहली चोट पर जो आंखें नम होती है ये माँ होती है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वह जीवन को गढ़ने वाली शक्ति होती है। वह बच्चे को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, संस्कार देती है और जीवन की कठिन राहों पर संभल कर आगे बढ़ना भी सिखाती है। एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए अनगिनत त्याग करती है। वह स्वयं थक जाती है लेकिन बच्चों की थकान मिटाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वह खुद दर्द सह लेती है लेकिन अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे व्यवस्था कराऊं?
2: एक जुगाड़ हावे, अच्छा पैसा मिली
1: का
2: अपन बैंक डिटेल दे, कई जन पैसा भेजी, फिर ओकर बताए अकाउंट में भेज देवे, कमीशन तोर
1: अतिक सरल।
3: खाक सरल, ये मनी म्यूला है, ये गलत पैसा भेजते दूसर के अकाउंट ले, ये अपराध है।
1: अपराध?
3: जेल के बर्तन धोए ला पड़ जाही।
1: ना भैया ना, जेल नहीं जाना है।
2: RBI कथे, जानकार बनाओ, चेत लग रहो।
4: माँ का प्रेम संसार का सबसे निस्वार्थ प्रेम माना गया है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अधिकार कम और समर्पण ज्यादा होता है। माँ कभी अपने प्रेम का हिसाब नहीं रखती। वह अपने हिस्से की खुशियां त्याग कर भी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। घर की सबसे अंतिम थाली माँ की होती है। सबके सो जाने के बाद भी जो व्यक्ति घर की चिंताओं में जागता रहता है वह माँ होती है। उसकी पूरी दुनिया अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन आज के तेज रफ्तार समय में मोबाइल, इंटरनेट और व्यस्त दिनचर्या ने हमें अपनों से कहीं न कहीं दूर कर दिया है। हम दिन भर दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन कई बार अपनी माँ से

दो पल बात करने का समय नहीं होता। जिस माँ ने हमारी हर छोटी बड़ी बात सुनी, आज यही माँ हमारे एक फोन कॉल का इंतजार करती है। कई बुजुर्ग माताएं आज अकेलेपन का जीवन जी रही हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा केवल इतनी होती है कि उनके बच्चे उनके साथ कुछ समय बिताएं। आज का यह दिन इसका वास्तविक अर्थ केवल उपहार देना नहीं, बल्कि माँ को यह एहसास दिलाना कि वह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कितना हमारे लिए मायने।

एक माँ केवल ममता की प्रतिमूर्ति ही नहीं बल्कि संघर्ष और धैर्य की मिसाल भी होती है। वह परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है, अपनी इच्छाओं का त्याग करती है ताकि बच्चों की इच्छाएं पूरी हो सकें। एक कामकाजी माँ का घर कार्यालय दोनों की जिम्मेदारियाँ वो निभाती है। गृहिणी पूरे परिवार को प्रेम और अनुशासन के सूत्र में बांध कर रखती है। हर रूप में माँ का योगदान अतुलनीय है। हमारी संस्कृति में भी माँ को सर्वोच्च जगह दी गई है। कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि।

और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 8 बजने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: कोलकाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेक S. नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक

0: आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
6: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा

0: था। भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly

कार्यक्रम माटी के स्वर सुनैया जम्मो संगवारी मन झोंकाओ हमर जय जोहार औ राम राम। तो श्रोता हो, आज के हमारे कार्यक्रम में अपन फरमाइशी गीत सुने बर पत्र भेजन वाला हमार श्रोता संगवारी मन हावे। एकर मन के नाम हमन लेवत हन, एमन हावे दतरंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। इंद्रानगर रायगढ़ ले हावें शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम।

ग्राम रसेड़ा कलतरा ले हावे मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश साहू कीर्ति साहू संध्या डिकेस डॉली पूर्वेश औ पीपरपारा पालचुआ मुंगली ले हावे उत्तरा कुमार दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर योगिता दिवाकर नितिन वंशिका दिवाकर भानुप्रिया दिवाकर औ रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा एक संघ हावे मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा और दामिनी वर्मा बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति रामशरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति भाटापारा ले हावे बचकमल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विजय ठाकुर चोवाराम वर्मा सूरज बारेकर नारायण यदु लेखराम यदु राधेश्याम टेलर अश्विनी पांडे सियाराम और जितेंद्र साहू भाटापारा ले हावे दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत और शुभम रावत एकर संगे संग हावे नीरज रावत तावा हमारे जम्मू श्रोता संगवारी मन के पसंद के कार्यक्रम के पहली गीत ला सुनी जे लगाए हैं जवाहरलाल बघेल।

जवाहरलाल बघेल अऊ साथी मन के गाए ए सुघ्घर गीत के पाछू आवाज सुनी एक ठन अऊ गीत ला। अऊ ए गीत ला सुने बर हमन करा फरमाइश अपन भेजे हवे हमार श्रोता संगवारी मन। एंकर मन के नाम हवे हथनी पारा भाटा पारा ले दुर्गा दुर्गेश्वरी गीतू मुकेश वर्मा हरीश किरण दुलारी वर्मा ग्राम कोरबी बेलतरा ले हवे मोहन सिंह राज अनीता राज सुमित सोमी अऊ मानस राज छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी ले हवें द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक झावेंद्र और महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति और रेयांश ठाकुर डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हवें राष्ट्रपाल गजबीए राधिका गजबीए बेबी अनिष्का और तन्मय बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले हवें रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिम्पल देवांगन और मेहमदपुर भक्तिन बाजार अकलतराले हमें रमेश कैवर्त राजकुमारी और आरती कैवर्त बलौदा अकलतराले हमें दिलहरण गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल और समृद्धि पटेल और चांदनी चौक गंडई पंडरियाले हमें पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन नकुल शाह मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज एमन हावे लुतरा खमरिया ले ता आवा सुनी हमार ए जम्मू श्रोता संगवारी मन के पसंद करे ए गीत ला ए गीत हावे संतोष शुक्ला के स्वरमा।

अउ एकता के संदेश दे ते सुग्घर गीत आप मन सुना जिला गाय रहीन संतोष शुक्ला अउ उनकर संगवारी मन अउ एक ठन अउ गीत आवा सुन लेन। ए गीत ला सुने बर हमन करा पत्र भेजे हवें तेलीपारा बिलासपुर ले रज्जन साहू बेबी सानी साहू छन्नूलाल श्रीवास अउ अनीता श्रीवास शांतिनगर भाटापारा ले हवे मिलव दास कुलदीप संतोष दास संदीप अजीत बिरझा संजना अउ लक्की गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ ले हवे ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी मसिया खुमेंद्र तुषारणी अउ अंबागढ़ चौकी ले हवे रिजवान खान आयशा सबीहा अनस अउ रेहान दतरेंगी ले हवे विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु अउ लक्ष्मीना यदु अउ एकरे संग बाग बहरा भदरसी ले हवे पन्ना लाल सेन तारा सेन कौशल सेन खुशबू सेन डोंगरगांव ले हवे राजपाल गजभिये और यवतमाल विदर्भ ले संतोष खटसे विनोद खटसे और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन

कौशल्या, हेमलता अउ डिम्पल। लक्षणपुर ले हावे रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश अउ मुकेश साहू। ता आवा सुनी हमारे श्रोता संगवारी मन के पसंद के गीत ला, जेला गाए हावे साधना यादव।

0: हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम माटी के स्वर आप मन सुना था आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र ले और एक ठनो गीत हमन आप मन ला सुनावा थन। ए गीत के हमन करा फरमाइश भेजैया हमर श्रोता संगवारी मन हावे जहांगीर मेहंदा ले राम नारायण कश्यप कविता देवी कश्यप कुसुमलता खुशबू और जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलऊदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई मोतीम बाई एमन हावे गाँव गणेश धाम मरसूली जिला बालोद ले और शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर असरफ अयाज अल्फैज सादिया एमन हावे बिल्हा और बिल्हा ले शेख नासिर महजबीन पानू शिवाजी चौक राजिम ले हावे अनिल कुमार अंजुलता आदित्य और कृष श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार रोशन बंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि दिशा देबू और लबीश श्रीवास्तव नैला बोरसला जांजगीर ले हावे हेमदेव तिवारी दुर्गा प्रसाद अभन कुमार मीनाक्षी उमा ठगिया देवी विष्णु

नमस्ते अवकृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्राले दीपक कुमार, रोशन बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा देबू और लबीश श्रीवास्तव, लैला बोरसला, जांजगीर ले हवे, हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अभन कुमार, मीनाक्षी, उमा ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद, अंजुलता, मोगरा देवी और प्यारे लाल मिश्र, बोरी खुर्द ले हवे, श्री जुधाकर सुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत जगुताई और देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मायाराम रजक, पुनेश्वर और बाजारपारा बेमेतरा ले हावे, भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल, ग्राम दरचुरा ले हावे, ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, रुआ बांधा सनीचरी ले हावे, सनीचरी बाजार भिलाई ले, सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन, गांव रोहासी ले हावे, डगेसा राम साहू, नूतन घनश्याम और गौरव साहू, धुरा बांधा भाटापारा ले हावे, प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, सोना डिले सुब्रत चौधरी, बेबी अनीसा और रायपुर ले नीलू मेघ नीलम, ता आवा हमारे जम्मू श्रोता संगवारी मन के पसंद के ये गीत ला सुनी।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 9 बज रहे हैं और अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से हम जुड़ेंगे।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे हैं आज नए गीत। माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का सुकून छिपा होता है। वो खुद थक जाती है लेकिन हमारी थकान पहचान लेती है। हमारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सपने चुपचाप समेट लेती है। मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत अनुपम अमोद की आवाज इर्शाद।

0: आखिरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को

0: हमार ने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितने

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है टबी पारेख, साहिल, प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के हर्षा इस फिल्म से। वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

फ्लाइंग जेट। इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा करमरे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा यह गीत, सचिन जिगर की आवाज।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना।

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनें।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज।

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुन्नलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

1941 फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

0: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफ एम 103.2 MHz पर। 9:55 होने वाले हैं रायपुर केंद्र से। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बाढ़ और लू की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। जशपुर जिले की सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देशभर में मिला तीसरा स्थान। और प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आज भी अनेक जिलों में हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। श्री शाह देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर में चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बागीचा तहसील के अंतर्गत सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। नगरी प्रशासन विभाग ने कई वरिष्ठ इंजीनियरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार रायपुर नगर

0: निगम के कार्यपालन अभियंता लाल महेंद्र प्रताप सिंह को नगर निगम बिलासपुर भेजा गया है। वहीं कवर्धा के कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम को दुर्ग स्थित संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा ब्रजेश श्रीवास्तव, ललित कुमार त्रिवेदी, सीबी परगनिया, हेमंत कुमार साहू, चंद्रशेखर सारथी और गगन वासन का भी तबादला किया गया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गुडबोले दंपत्ति से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। कल भिलाई में अतिरिक्त सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ वैशाली नगर के विधायक ऋकेश सेन ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सेंटर भिलाई दुर्ग क्षेत्र की महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अब किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा या अन्य किसी भी संकट के दौरान पीड़ित महिला को भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आज प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बाढ़ और लू की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। जशपुर जिले के सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देशभर में मिला 3रा स्थान और प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आज भी अनेक जिलों में हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। एफएम 103.2 MHz पर 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों।

जय हिंद। आप सभी को आपकी दीदी लिंटा का प्यार। आशा करते हैं अपना अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए आप सभी बच्चे अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। गर्मी की छुट्टियों का आनंद भी बड़े मजे से ले रहे हैं। और हाँ बच्चों, आप सभी को मदर्स डे की भी बधाई। वैसे बच्चों, मम्मी के साथ बिताया गया हर दिन ही आप सभी के लिए खास होता है ना, क्योंकि वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त, आपकी ताकत और टीचर भी होती हैं, जो कि हमेशा आपको अच्छी बातें सिखाती हैं। वाकई बच्चों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में प्यार और अपनेपन का एहसास होता है। जब आप उदास होते हैं तो किसी न किसी तरह से आपको खुश करके वो हंसाती हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका ख्याल रखती हैं। और जब आपको किसी तरह की सफलता प्राप्त होती है तो सबसे ज्यादा खुश भी आपकी माँ ही होती है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सभी की मम्मी हर पल हमारा ध्यान रखती है। और यही नहीं, बिना छुट्टी के हर दिन आपके लिए बहुत काम भी करती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो नाश्ते खाने से लेकर रात को सोने से पहले तक आपकी हर चीज़ों का ख्याल रखती हैं। पढ़ाई के समय भी चिंता करती हैं, नोट्स बनाते समय आपकी मदद करती हैं, आपके साथ जागती हैं। जब आप घर पर या बाहर दोस्तों के साथ होते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से रहना और व्यवहार करना है, इनकी सीख भी आपको देती हैं। अच्छे और बुरे का ज्ञान भी समय समय पर आपको देती हैं बच्चों। सचमुच माँ का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है हम सभी के लिए। आपने देखा होगा, जब आपको कोई परेशानी होती है, किसी बात की चिंता होती है, तो सबसे पहले आप अपनी मम्मी से ही बातें शेयर करते हैं। पापा के पास जाने से थोड़ा सा डर जाते हैं कि पता

0: वो कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। मम्मी है तो सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि उनकी डांट और मार भी आपको अच्छी लगती है, और किसी ना किसी रूप में मम्मी के बुरा मानने या गुस्सा होने पर आप उन्हें मना ही लेते हैं, है ना बच्चों। इसलिए केवल एक विशेष दिन माँ के लिए काफी नहीं है, क्योंकि माँ का महत्व हमारे जीवन में हर दिन हर पल होता है। वो हमारे जीवन की उस रोशनी के समान है जो हर कठिन रास्ते को आसान बना देती है। कई बार बच्चों आप अपनी व्यस्तता के कारण मम्मी को थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। याद रखिए बच्चों, किसी खास दिन उनको अच्छे उपहार या गिफ्ट देने से नहीं, लेकिन आपके प्यार और सम्मान से वे सबसे ज्यादा खुश होती हैं। इसलिए बच्चों हमेशा मम्मी की बात मानिए, वो जैसा आपसे कहती हैं वैसा करिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद कीजिए। जब आप फ्री होते हैं तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। आप चाहें तो उनसे कुछ पुराने किस्से सुन सकते हैं या उनके साथ गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। आसपास टहलने के लिए भी आप बात करते हुए उनके साथ निकल सकते हैं और अपने इस प्यारे से रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों हर दिन हर पल आप सभी अपनी मम्मी को दिल से धन्यवाद कहें और उन्हें यह एहसास भी दिलाएं कि आपके जीवन में वे कितनी खास हैं और आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। हमें पूरा विश्वास है आप सभी प्यारे हैं, ऐसा जरूर करेंगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
2: क्या माँ?

0: जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ? फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ,

0: आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं बच्चों, कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी बिलासपुर के बच्चे, और आप हैं मलक, श्रीकर, निपुण, श्रीजल, आयुषी, मौलीश्री और प्रियांशु। हमेशा की तरह हम इनसे जुड़कर ये जानना चाह रहे थे कि हमारा मनोरंजन आखिर ये किस प्रकार से करने वाले हैं। लेकिन मलक ने अभी कुछ देर पहले मुझसे कहा कि दीदी, आज के कार्यक्रम में हम कुछ हटके करना चाहेंगे। मैंने पूछा वो क्या, तो इन्होंने बोला हम कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न तैयार करके लाए हैं, तो हमारे जो ये मित्र हैं उनके साथ कार्यक्रम सुनने वाले जो हमारे नन्हे साथी हैं वो भी मैं चाहूंगी कि इन सवालों के जो जवाब हैं वो हम तक पहुंचाएं। और मलक जो है बच्चों वो क्विज की एंकरिंग करना चाहेंगी, तो मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और अब मैं बिना देरी किए माइक में आमंत्रित कर रही हूँ मलक तिवारी को।
1: नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के महासंग्राम में जिसका नाम है दिमाग की बत्ती। मेरा नाम मलक तिवारी है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। दरअसल लिंटा दीदी से हमारी कई बार मुलाकात होती रहती है, तो इस बार हमने सोचा कि कुछ हटके करते हैं। हटके इन द सेंस कि कुछ क्विज कंपटीशन रखते हैं जिससे लोगों को सुनने और समझने में भी अच्छा लगे। तो इसी बीच में अभी गर्मी की छुट्टी भी चल रही है, तो मैंने सोचा अपने साथियों को भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे पास दोस्तों तीन टीमें हैं। पहली टीम है टीम अर्पा, दूसरी टीम है टीम बिलासा और तीसरी टीम है टीम महामाया। तो अब मैं चाहती हूँ कि टीम अर्पा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीजल दुबे है, मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। यहाँ मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है।
3: मेरा नाम आयुषी शर्मा है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आकाशवाणी पे आने का मौका मिला।
1: तो दोस्तों ये थे हमारे टीम अर्पा से श्रीजल दुबे और आयुषी शर्मा, और अब मैं चाहूंगी कि टीम बिलासा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें।
4: हेलो सभी लोग, मेरा नाम है प्रियांशु साहू और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरी हॉबीज हैं फुटबॉल खेलना और बास्केटबॉल खेलना, और आज हम आकाशवाणी में क्विज कॉम्पिटिशन के लिए आया हूँ जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और हम यहाँ से जीत के ही जाएंगे।
5: मैं मौलीश्री भट्ट हूँ और मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ आज के इस क्विज कॉम्पिटिशन के लिए, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: तो दोस्तों ये थी टीम बिलासा जिसमें मौली श्री भट्ट और प्रियांशु साहू। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी टीम की तरफ जो कि है टीम महामाया। तो मैं चाहूंगी कि वो भी अपने बारे में दो शब्द कहें।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण मिश्रा अपने दोस्त के साथ यहाँ पे क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया।
7: नमस्कार दोस्तों, मैं केवीए श्रीघर यहाँ पे इस क्विज कंपटीशन में अपने मित्र निपुण मिश्रा के साथ भाग लेने आया हूँ और मैं चाहूंगा कि यहाँ से कुछ जीत के ही जाऊं।
1: तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टीम आखिरी जो कि टीम महामाया, और उनसे हैं केवीए श्रीघर और निपुण मिश्रा। तो टीम अर्पा, टीम महामाया और टीम बिलासा, क्या आप तैयार है इस क्विज कॉम्पिटिशन के लिए?
8: हाँ।

0: तो दोस्तों, हमने आपको हमारी टीमों से मुलाकात करा दी है। आइए अब जानते हैं इसके रूल्स। हालांकि इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। हमारे पास तीन राउंड होंगे। पहला राउंड जो कि बहुत सिंपल रहेगा, जिसमें एक टीम से हम तीन क्वेश्चन पूछेंगे और सही जवाब देने पे 10 पॉइंट रहेगा, गलत जवाब देने पे 0 रहेगा। फिर हम चलेंगे दूसरे राउंड की तरफ, जो कि है हमारा रैपिड राउंड। इसमें क्वेश्चन पूछे जाने पे जो भी टीम सबसे पहले आंसर देगी उसका पॉइंट गिना जाएगा और जो नहीं देगी उसका 0 काउंट होगा। हमारा जो आखिरी राउंड रहेगा वो रहेगा हमारा बजर राउंड। तो क्या रूल्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए?
1: हाँ, आ गए।
0: तो शुरू करें दोस्तों।
1: यस।
0: तो पहला राउंड हम शुरू करते हैं टीम अर्पा से। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आकाशवाणी बिलासपुर का स्थापना दिवस कब है? टीम अर्पा से आयुषी आप बताइए।
2: आकाशवाणी बिलासपुर का स्थापना दिवस 1 मई 1991 है।
0: आपका जवाब सही है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आप ही की टीम से ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आकाशवाणी के कुल कितने केंद्र हैं? टीम अर्पा से श्रीजल दुबे आप बताइए।
3: आकाशवाणी के छत्तीसगढ़ में कुल 5 केंद्र हैं।
0: आपका जवाब सही है। अब आपसे ये आखिरी क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो का स्लोगन क्या है? टीम अर्पा से श्रीजल जी आप बताइए।
3: ऑल इंडिया रेडियो का स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुताय।
0: आपका जवाब गलत है। तो टीम अर्पा से श्रीजल जी, क्या आप दोबारा इसको ट्राई देना चाहेंगे?
3: नहीं, हमें इसका आंसर नहीं पता।
0: ठीक है, यही सेम प्रश्न हम दूसरी टीम की ओर देते हैं। टीम बिलासा, आपके लिए प्रश्न ये है कि ऑल इंडिया रेडियो का स्लोगन क्या है?
4: हमें भी इसका उत्तर नहीं पता।
0: कोई बात नहीं, हम अपनी आखिरी टीम की ओर चलते हैं, टीम महामाया। टीम महामाया, आपके लिए भी ये क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो का स्लोगन क्या है? टीम महामाया से निपुण जी आप बोलिए।
5: ऑल इंडिया रेडियो का स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
0: ये सही जवाब है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टीम की ओर, जो कि है टीम बिलासा। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि भारत में मन की बात कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? टीम बिलासा से प्रियांशु आप बताइए।
4: मन की बात कार्यक्रम की प्रस्तुति हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाती है।
0: आपका जवाब सही है। तो टीम बिलासा, आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? टीम बिलासा से मौली श्री आप बताइए।
6: प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं श्री प्रसून जोशी।
0: मौली बहुत अच्छे, आपने बहुत सही जवाब दिया है। तो आखिरी प्रश्न आपकी टीम के लिए ये है कि बिलासपुर आकाशवाणी केंद्र में सुबह की सभा का आरंभ कितने बजे होता है? टीम बिलासा से मौलीश्री आप बताइए।
6: हमारे बिलासपुर आकाशवाणी केंद्र से सुबह की सभा का आरंभ सुबह 5:51 पर होता है।
0: क्या बात है, आपका जवाब एकदम सही है। तो अब हम चलते हैं हमारी आखिरी टीम की ओर, जो कि हमारी टीम महामाया। तो टीम महामाया, क्या आप तैयार हैं?
5: जी बिल्कुल।
0: तो आपके लिए पहला प्रश्न ये है कि आकाशवाणी बिलासपुर से पत्रों पर आधारित पॉपुलर प्रोग्राम का क्या नाम है? टीम महामाया से केवी श्रीकर आप बोलिए।
7: आकाशवाणी बिलासपुर केंद्र से पत्रों पर आधारित पॉपुलर प्रोग्राम का नाम है चिट्ठी मिली।
0: आपका जवाब एकदम सही है। तो टीम महामाया, आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है कि भारत में पहला रेडियो प्रोग्राम किस साल ब्रॉडकास्ट हुआ था? टीम महामाया से निपुण जी आप बताइए।
5: भारत में पहला रेडियो प्रोग्राम 1923 में ब्रॉडकास्ट हुआ था।
0: क्या बात है, आपका जवाब सही है। तो टीम महामाया, आपके लिए आखिरी प्रश्न

0: ये है कि ऑल इंडिया रेडियो का लोगो किसने डिजाइन किया? मैं दोबारा प्रश्न दोहरा देती हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का लोगो किसने डिजाइन किया?
1: माफ कीजिए, हमें इसका उत्तर नहीं पता है।
0: कोई बात नहीं, तो ये प्रश्न पास होता है टीम अर्पा की तरफ। टीम अर्पा, आपके लिए सेम क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो का लोगो किसने डिजाइन किया? टीम अर्पा से आयुषी जी, आप बताइए।
2: ऑल इंडिया रेडियो का लोगो CL फैब्री ने डिजाइन किया है।
0: आपका आंसर एकदम सही है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे राउंड वन में हमारी तीनों टीमों ने एक जैसा परफॉर्म किया है। तो तीनों टीमों के बीच में टाई है और उन्होंने 30-30 अंक प्राप्त किए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की ओर, जो कि है हमारा रैपिड फायर। अब इसमें पूछे जाने सवाल पे जो भी टीम सही जवाब और पहले जवाब देगी उसके अंक बढ़ेंगे और जो नहीं दे पाएगी उसके जीरो रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए ये है, भारत का पहला सोलर मिशन सूरज के लिए कौन सा है? टीम अर्पा से श्रीजल जी, आप बताइए।
3: आदित्य L1।
0: क्या बात है, आपका जवाब एकदम सही है। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि चंद्रयान जहां लैंड हुआ उस पॉइंट का क्या नाम है? टीम महामाया से निपुण जी, आप बताइए।
1: चंद्रयान जहां लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि मिस वर्ल्ड 2024 का ग्रैंड फिनाले किस भारतीय शहर में हुआ था? टीम अर्पा, श्रीजल जी, आप बताइए।
3: मुंबई शहर से।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए ये है कि भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम जो GPS की तरह काम करता है उसका नाम क्या है? मैं दोबारा प्रश्न दोहरा देती हूँ कि भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है जो GPS की तरह काम करता है उसका नाम क्या है? तो फिलहाल दोस्तों, हमारी टीमों ने इसका सही आंसर नहीं बताया क्योंकि उनको इनका आंसर नहीं पता है। तो चलिए मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ जो हमें यहाँ रेडियो से सुन रहे हैं। इसका सही जवाब है कि भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम जो GPS की तरह काम करता है उसका नाम NAV IC है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टीम महामाया से निपुण मिश्रा, बताइए।
1: भारत का सबसे ऊंचा डैम है हीराकुंड डैम।
0: आपका जवाब गलत है। ये सेम प्रश्न हम टीम अर्पा की तरफ पास करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है?
3: भारत का सबसे ऊंचा डैम टेहरी डैम है।
0: आपका जवाब एकदम सही है। छठा क्वेश्चन आप सबके लिए ये है कि इंडिया में नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? टीम अर्पा से श्रीजल जी, आप बताइए।
3: भारत में नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है।
0: ऐसा लग रहा है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। आपका जवाब एकदम सही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो टीम अर्पा बहुत लीड पे चल रही है। अब हम अपने सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न ये है कि भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराती हूँ कि भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? तो दोस्तों, मेरी इन टीम को इसका आंसर नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको अपना सही आंसर बता देती हूँ। भारत की पहली महिला इंजीनियर ललिता थी। अब हम चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? टीम महामाया, निपुण जी, आप बताइए।
1: सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भारत के बेंगलुरु शहर को कहा जाता है।
0: बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। नौवा और आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है। उससे पहले मैं बता दूं कि टीम बिलासा ने एक भी जवाब नहीं दिया है। तो नौवा क्वेश्चन

0: आप सबके लिए ये है कि ब्लू रे डिस्क और डीवीडी में से किसकी स्टोरेज ज्यादा है। टीम महामाया से श्रीकर जी आप बताइए।
1: ब्लू रे डिस्क और डीवीडी में से डीवीडी की स्टोरेज ज्यादा होती है।
0: आपका जवाब गलत है। हम ये प्रश्न टीम बिलासा से पूछना चाहेंगे।
2: ब्लू रे डिस्क और डीवीडी में से ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज ज्यादा है।
0: आपका जवाब एकदम सही है। तो राउंड टू हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तो मैं आप लोगों को इनके स्कोर बता देती हूँ। राउंड टू के विजेता हैं टीम अर्पा, जिसमें से श्रीजल दुबे और आयुषी ने स्कोर किया है 70 पॉइंट्स, और सेकंड विनर है टीम महामाया, जिनके मेंबर्स हैं निपुण मिश्रा और केवीए शेखर, और इन्होंने टोटल 50 पॉइंट सिक्योर किया है। और थर्ड विजेता टीम है हमारी टीम विलासा, जिनके मेंबर्स हैं प्रियांशु साहू और मौलिश्री भट्ट, जिन्होंने 40 पॉइंट्स सिक्योर किया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो दो टीमें हैं जो थर्ड राउंड की ओर बढ़ेंगी, वो है टीम अर्पा और टीम महामाया। तो चलिए अब हम अपने आखिरी राउंड की ओर बढ़ते हैं। आखिरी राउंड हमारा बजर राउंड होगा। जो टीम बजर दबाएगी और सही जवाब देगी उसको पॉइंट्स मिलेंगे, और जो टीम गलत जवाब देगी उसको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पहला प्रश्न आप दोनों टीमों के लिए ये है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। टीम अर्पा आप बताइए।
3: सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
0: आपका जवाब एकदम सही है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि जापान का पुराना नाम क्या था। टीम महामाया से निपुण जी आप बताइए।
4: जापान का पुराना नाम निपोन था।
0: आपका जवाब एकदम सही है। प्रश्न आप दोनों टीमों के लिए ये है कि भारत में सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण किस राज्य में है। टीम अर्पा से आयुषी जी आप बताइए।
3: भारत में सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, आपका जवाब एकदम सही है। तो आप लोगों के लिए पांचवा प्रश्न ये है कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है। टीम महामाया से निपुण जी आप बताइए।
4: भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर का नाम है किरण बेदी।
0: क्या बात है, आपका जवाब सही है। छठा प्रश्न आप सभी के लिए ये है कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना। टीम महामाया से निपुण जी आप बताइए।
4: 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जसप्रीत बुमराह को मिला था।
0: बहुत बढ़िया, आपका जवाब सही है। तो दोस्तों अभी तक का जो स्कोर है इससे हमें पता चलता है कि टीम अर्पा पूरे 10 पॉइंट से लीड कर रहा है, और दोनों टीम के बीच में एक कांटे की टक्कर चल रही है। अब आगे के प्रश्न हमें बताएंगे कि इन दोनों टीमों में से कौन विजेता टीम है। तो छठा प्रश्न आप सभी के लिए ये है कि फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है। टीम महामाया से निपुण जी आप बताइए।
4: फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी को कहा जाता है।
0: बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। सातवां प्रश्न आप दोनों टीमों के लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। टीम महामाया से श्रीकर जी आप बताइए।
1: ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है।
0: आपका जवाब सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि टीम महामाया ने लीड ले ली है, वो भी पूरे 10 पॉइंट से। अब हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं जो बताएगा कि कौन सी टीम जीतती है और कौन सी हारती है। आखिरी प्रश्न आप दोनों टीमों के लिए ये है कि भारत के तिरंगे का रूपरेखा किसने तैयार किया। टीम महामाया से श्रीकर जी आप बताइए।
1: भारत के तिरंगे की रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने बनाया था।
0: आपका जवाब एकदम सही है। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि बजर राउंड में या पूरे टोटल राउंड्स में टीम महामाया, जिनके प्लेयर्स हैं निपुण मिश्रा और केवी श्रीकर, उन्होंने लीड लेकर ये राउंड के विजेता बनाया। चलिए अब जानते हैं जो टीम जीती है, टीम महामाया जिनके प्लेयर्स हैं निपुण मिश्रा और केवी श्रीकर,
2: उनका इस मंच पे कैसा अनुभव था।
5: हमें जीत के बहुत अच्छा लग रहा है, और हम अपने विरोधी टीम को भी बधाई देना चाहेंगे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की पर रिजल्ट आपके सामने है।
6: आखिरकार हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया, और यही दिखाता है हमारी टीम का बल।
2: तो दोस्तों आज के हमारे दिमाग की बत्ती क्विज खत्म होता है यहीं पे, और मुझे और मेरे दोस्तों को तो बहुत ज्यादा मजा आया। उम्मीद है आप सबको

0: भी मजा आया होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, मिलते हैं अगली बार नए सवालों और नए दिमागों के साथ। शब्बा खैर। और आइए जुड़ते हैं अब लिंटा दीदी से।
1: बच्चों, आशा करते हैं कि हमारे इन नन्हे दोस्तों के सवाल जवाब पर आधारित क्विज ऑन रेडियो का आनंद आप सभी ने जरूर उठाया होगा। आप सभी हमें पत्रों के द्वारा बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आपके पत्रों का हमें इंतजार भी रहेगा। फिलहाल बच्चों, धीरे धीरे समय भी अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है, तो इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, एक और जरूरी बात आपके साथ साझा करना चाहूंगी, और वो जानकारी है बच्चों सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। बच्चों, हम सभी रोज सड़क का उपयोग करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, कभी आप बाजार जाते हैं, खेलने के लिए खेल के मैदान में भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए हर साल हम सड़क सुरक्षा सप्ताह किसी न किसी रूप में मनाते हैं, ताकि लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा सके। और बच्चों, सड़क पर यदि आप सावधानी रखना सीखेंगे तो हमेशा सुरक्षित भी रहेंगे। कई बार खेलते खेलते अचानक आप सड़क पर आ जाते हैं, या चलती गाड़ियों के सामने आ जाते हैं, या आप सड़क को पार करते समय इधर उधर नहीं देखते हैं, और ऐसी छोटी गलतियां खतरनाक भी हो सकती है बच्चों। इसलिए सड़क पर हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। सड़क पार करते समय पहले दाएं देखें, फिर बाएं, और फिर दोबारा दाएं देखकर सड़क पार करें। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना बेहद आवश्यक है बच्चों। और इसी प्रकार सड़क पर चलते समय मोबाइल का उपयोग भी ना करें, या अपने दोस्तों के साथ आप बातचीत करते हुए चल रहे हैं तो उस समय भी ध्यान दें। इस प्रकार से बच्चों, यदि हम यातायात के नियमों का पालन करें तो अनेक दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। याद रखिए बच्चों, सावधानी ही सुरक्षा है। और अब इन्हीं बातों के साथ दीजिए अनुमति आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 10:30 हुए हैं, और अब आइए लेते हैं आनंद नए तरानों का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
2: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना सुनिए। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता क्रम में फोन से आधारित है। यह माह दूसरे मंगलवार 12 मई 2026 5:35 पर इसका प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 11 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे से शाम 4:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा, आंखों की देखभाल कैसे करें। विषय विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ज्योति आचार्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-2665923100026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। ये कार्यक्रम महिला सभा के लिए ये सूचना। और आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं नए तरानों का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

नए तराने अभी आप सुन रहे थे और इस गीत के साथ ही ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 11 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और अमर जी कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है
1: जी।
0: क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या सुनाएंगे,
1: क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या खजाना है विविध भारती का।
0: जी, तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी।
1: देखिए ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की। तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार
0: जी,
1: और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं,
0: मैं नाम बता रही हूँ अब, और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा।
1: बिल्कुल ठीक
0: तो
1: कहा आपने।
0: आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल
1: जी।
0: सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे?
1: सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें।
0: जी जी।
1: रीमा लागू जी का।
0: बिल्कुल। रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्मों
1: जी
0: में।
1: लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था
0: जी।
1: दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं मैं। श्रीमान श्रीमती में तो ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं मैं में ये सास बनी थी,
0: और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया
1: पिलगांवकर,
0: उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्ट

0: इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था।
1: अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भाटभड़े
0: जी।
1: 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया।
0: मात्र 59 वर्ष की आयु
1: जी,
0: बहुत कम उम्र में वो चली गई। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था।
1: हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि रीमा जी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम करती रही हैं
0: जी।
1: मराठी में इन्होंने काम किया, फिर मराठी फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, इस तरह से इनकी जर्नी चलती रही। और जब सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन फिल्म प्लान करी तो उस दौरान मनीषा जी हुआ क्या कि वो फिल्म को पूरा एक नया लुक दे रहे थे सूरज बड़जात्या
0: जी।
1: वो आपको तो पता ही है कि नदिया के पार का रीमेक था
0: जी। हाँ, एक अर्बन नदिया के पार कह लीजिए
1: जी जी। और उसमें इनकी कोशिश थी सूरज बड़जात्या के कि सब कुछ एकदम मॉडर्न हो, पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत चेहरे, बहुत ही
0: अच्छी स्टार कास्ट जबरदस्त जी।
1: अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात परिवार की एक कमांडिंग
0: मदर हो। मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ,
1: ये बिल्कुल सही शब्द आपने पकड़ा
0: जी।
1: और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी और फिर वहीं अटक गई।
0: और कितनी हसीन लगी है उस फिल्म में,
1: बिल्कुल
0: वात्सल्य की मूर्ति रीमा लागू, और उनके पीछे वो छुप के माधुरी दीक्षित का कहना माई री माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अमर जी आपने कहा था गीत सुनाए,
1: बिल्कुल तो गाना सुनते हैं उसके बाद बातचीत।

0: मनीषा जी, गाना तो आपने सुनवा दिया, लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है इनकी।
1: बिल्कुल, और रीमा जी की एक बहुत प्यारी बातचीत हमारे पास है।
0: तो फिर देर किस बात की?
1: बिल्कुल, बातचीत उनसे की थी यूनुस खान ने, तो उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू।
2: रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
3: शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी।
2: जी जी।
3: मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था, तो
2: अच्छा।
3: कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था
2: जी,
3: जो शायद अभी भी आता होगा, तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के

0: या मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी।
1: ये जो रेडियो का दौर है ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है।
0: एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है, जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। और भी कंपटीशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है, ये फ्रेंड बन गया है रेडियो
1: यानी
0: आजकल।
1: बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ
0: जुड़ा
1: है,
0: हुआ है बिल्कुल,
1: लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था?
0: वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी तो उनके साथ मैं जाया करती थी, तो आई थिंक वहां से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज।
1: घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे।
0: हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं, फिल्में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया।
1: बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है?
0: जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ।
1: कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स, वो सारा माहौल कैसा था उन
0: एक्चुअली
1: दिनों
0: इट्स
1: का?
0: वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो, एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है,
1: जी
0: यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं,
1: जी
0: यू
1: ग्रो
0: यू
1: करते हैं एक
0: ग्रो
1: तरह से।
0: करते हैं एज एन आर्टिस्ट, और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है फिर।
1: खाने पीने की कोई सुध नहीं और वो
0: हाँ, एक
1: जो
0: वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी।
1: ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था?
0: ऐसे प्लेज मैंने काफी किए हैं, बट सक्सेस के तौर पे जिसको कह सके, या लोगों की तरफ से जो मुझे एक्सेप्टेंस हुई, वो था पुरुष करके,
1: जी
0: जयवंत दलवी जी का प्ले था, जो विजय मेहता जी ने डायरेक्ट किया था,
1: बाद में उन्होंने दोबारा
0: वो हिंदी
1: अभिनय।
0: में हुआ,
1: जी
0: मगर दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट आई
1: जी
0: कैन से।
1: वैसे तो जो हिंदी दर्शक हैं उन्होंने आपको मैंने प्यार किया इस फिल्म से पहचाना, लेकिन आपकी सिनेमा में एंट्री इससे पहले हो गई थी। शायद 1980 में आपकी पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूं तो।
0: जी, मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था तो इसलिए मुझे हंसी आई,
1: अच्छा
0: मैं रोल नहीं था मेरा कुछ, मुझे लावणी से बहुत लगाव था। ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो।
1: जी
0: सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था, वो लगातार दोनों फिल्म में, मेरे ख्याल से कलयुग भी आई थी उसी वक्त एंड आक्रोश भी आई थी,
1: जी
0: उसके बाद अगेन देर वॉज अ बिग गैप।
1: लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थीं।
0: हाँ, सिंहासन आई थी और दो तीन,
1: माझा घर माझा
0: हाँ,
1: संसार,
0: माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपट आई, ननंद भौजाई आई थी कह
1: तो
0: सकते हैं।
1: आपकी मराठी सिने यात्रा कहां से शुरू हुई थी?
0: वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, तू सुखी रहा है, काफी फिल्में की थी मैंने, बट सिंहासन, फिर ये ननंद जो अभी मैंने बताई, वही फिल्में मैंने, मेरी शुरुआत हुई थी। कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में एज अ लीडिंग लेडी, उसके बाद फिर गैप आया एंड देन।
1: और रंगमंच तो आपका चल ही रहा
0: हाँ,
1: था।
0: वो तो चली, वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था।
1: अच्छा ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ?
0: एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था, उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में, उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा
1: जी
0: और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में, तो मैं वहां गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग, तो मुझे पता नहीं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वॉज नरेटिंग मी द स्टोरी। मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे हैं वैसे ही आप शूट करेंगे, बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे। मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है बताया कुछ जाता है दिखाया कुछ और जाता है, तो
1: जी
0: बोले नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, यू नो। तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं, एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट, एंड राजश्री पीपल दे आर रियली वेरी नाइस पीपल, लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है, यू नो,
1: जी
0: तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है, तो
1: जी
0: ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है।
1: मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने मां की भूमिका की होगी
0: जी,
1: और उसके बाद फिर एक
0: फंस
1: तरह से
0: गई
1: वो
0: मैं,
1: रिवाज।
0: फंस गई मैं।
1: मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी?
0: मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है, हंसने हंसाने में बड़ा मजा आता है।

0: सीरियस में थोड़ा थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को, यू नो, बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट आई फील. लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है. बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है, जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है. तो
1: कैसे
0: ऐसे
1: वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था?
0: मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है,
1: जी
0: बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल पूछती नहीं हूँ. एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की. वेन एवर ही ऑफर्स मी ए रोल आई डू इट. तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है. तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं. एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं. एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चालसी, बट उससे थोड़ा बढ़ के. बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफेयर. टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफेयर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैंने देख चुकी थी मैं जहां रह रही थी, तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं, या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो. थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली.
1: जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से
0: निकला है.
1: बाहर आया तो कैसा लगा?
0: अच्छा लगा, बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये
1: जी
0: रोल का ग्राफ है. वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है. तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं, उस
1: जी
0: वक्त पता चलता है. बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है. देन वी टेक द प्रिकॉशन कि पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, यू नो. तो जब मैंने वो सीन किया, उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ, व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे. काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा. जब आपने, आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि ये
1: मतलब
0: फिल्म
1: अभिनेत्री
0: का
1: एक
0: है.
1: तरफ हो गई और
0: हाँ,
1: कैरेक्टर आगे
0: तो
1: आ
0: कई
1: गया।
0: लोगों को ऐसा कि नहीं नहीं माँ है, मार कैसे सकती है. अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल.
1: अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं को बड़ा यादगार मानती हैं जो आपके अपने दिल के करीब हैं?
0: आशिकी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जहां पे प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है औरत के. बिकॉज ज्यादातर के अपने यहाँ पे हिंदी फिल्मों के रोल्स एक ही ढांचे के रहते हैं, तो उसमें अलगपन बहुत कम
1: जी
0: जगह मिलता है. तो उसमें से इसलिए मुझे आशिकी का जो प्रोग्रेसिवनेस था उस औरत का दिखाया था, सिंगल लेडी हु इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो ग्राफ मुझे अच्छा लगा था. बाकी ऐसे नहीं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है.
1: जी
0: और एक मराठी फिल्म आई कैन से आपली मानसे करके था, उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा.
1: किस तरह का रोल था?
0: इट वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, बट इट वॉज, आई डोंट नो, मुझे करते वक्त मैं अभी तक उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में है.
1: रीमा जी, आप किस तरह का संगीत पसंद करती हैं?
0: मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है, और हिंदी फिल्मों का संगीत या मराठी गाने. बट वेस्टर्न का मुझे पता नहीं है, या शायद बचपन से कभी सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं था उस वक्त. तो मम्मी और डैडी के साथ मैं कभी क्लासिकल गाने बहुत सुनती थी, कोई प्रोग्राम्स को जाती थी, तो क्लासिकल अच्छा लगता है. और लाइट
1: आज भी
0: बंगाली
1: शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जा पाती हैं अब?
0: कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभार अगर वक्त मिला तो मैं जाती हूँ. किशोरी आमोनकर जी का गाना मैंने सुना है, देन वीणा सहस्त्रबुद्धे जी मुझे अच्छी लगती है, और देवकी पंडित है.
1: जी
0: काफी काफी आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है, उनके गाने. भीमसेन जोशी का मैंने गाना सुना है, जो
1: क्या
0: मुझे
1: बात है।
0: बहुत ही, यानी वो एक प्रेरणा मिलती है उनका गाना सुनो. उनके उनकी जो आवाज है ना, उससे अंदर हो जाता है एंड यू गेट द
1: जी
0: स्ट्रेंथ.
1: बिल्कुल, भारतीय संगीत का गंधर्व सुर है वो
0: जी
1: एक तरह
0: बिल्कुल,
1: से।
0: मैं बहुत आवाज की उनकी तारीफ करती हूँ.
1: आइए एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल, भीमसेन जी का एक अमोल जी की फिल्म थी
1: वो गाना मुझे,
0: अनकही,
1: हाँ
0: उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना है भीमसेन जी.

0: बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार, ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं।
1: सच में
0: खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया, सज्जन
1: जी,
0: जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे हो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्रदराज लोग नहीं हैं, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं।
1: उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का।
0: जी,
1: मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाएं।
0: सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको।
1: लेकिन पहले
0: फिलहाल उस म्यूजिक को सुन लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको बड़ा मजा आएगा।

0: マトじゃないと、マトじゃないと俺は。
1: ये थे विक्रम और बेताल के सज्जन, और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था, और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित हो जाएंगे।
2: इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था, और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे, और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था, और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुका शुरू से रहा, और ये गीतकार बनना चाहते थे
1: जी।
2: और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए, क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी, आप बेहतर जानते हैं।
1: गढ़ था उस समय फिल्मों का जी।
2: और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय, वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी, और यही वो दौर था जबकि इनको मासूम, चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं, और वहां से ये आ गए मुंबई, और यहां आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब, जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब लोग जानते हैं उनको,
1: ऐसे बड़े बड़े नाम जी।
2: और उसके बाद तो इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रुपए से शुरुआत हुई थी इनकी
1: 35 रुपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन साहब ने लिखे थे, और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे। एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे, और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
2: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी, और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
1: क्या बात है,
2: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
1: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे, मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं, तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
2: अब ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है, और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
1: जॉनी मेरा नाम जी, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को,
2: राय साहब भूपिंदर सिंह
1: जी,
2: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रणजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है
1: जी। हाँ,
2: वो
1: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है,
2: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी,
1: याद दिलाइए,
2: चलती का नाम गाड़ी।
1: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार
2: जी
1: सज्जन साहब का था, और
2: विलन थे
1: थोड़ा सा जी, हाँ थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
2: बिल्कुल
3: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट से या कि हीरो से, आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
4: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर हमने ज्वाइन किया, वहाँ कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया, और फिर फिल्मों में हीरो बने, काफी अरसे तक हीरो रहे, नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुड्ढे हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहेगा।
3: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
4: बिल्कुल नहीं अजीब लगता, हमने तो ये

0: समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
1: आजकल आपको, अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्म में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं,
0: ये तो
1: तो या ऐसा
0: असंभव
1: लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर?
0: नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था, और इत्मीनान से फिल्म बनती थी। तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो की वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे। और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट हैं, तीन तीन शिफ्ट हैं, अब कोई आदमी सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में 5 6 जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का, और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके तो नजर घड़ी पर है, अभी ये आया है, अभी घंटे 1.5 घंटे में भाग जाएगा, तो अब वो बात रही नहीं, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके वन मैन शो करते हैं, अपने मतलब एक शो करते हैं, समझो कि 6 8 महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है।
1: जी
0: शाइलॉक भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं, समझे, गुरुदेव टैगोर क्या करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूं इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं। हमने अब तक 74 शो किए हैं, समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए, वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते हैं। अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़। इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए ना तो दखल देता हूं और ना ये उम्मीद करता हूं कि मेरे दखल देने से यहाँ कुछ होने वाला।
1: मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही?
0: सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर, बस
1: लेकिन
0: ये सेटिस्फेक्शन।
1: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिली, थिएटर में या कि फिल्मों में?
0: हमेशा थिएटर में, हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे, समझे, अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया है कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय, समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय है।
1: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल, तकरीबन 90% लोग हैं, वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
0: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है, समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8 10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है, समझे, और कम से कम वहाँ 400 500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग जो शहर, जो
1: बंबई
0: शहर
1: की बात कर रहे हैं।
0: नहीं, नहीं, मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर, समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है, समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है, समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, समझे, एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
1: जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं?
0: पूरी
1: क्या आप भी फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं?
0: नहीं,
1: या
0: नहीं,
1: कुछ
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: करते
0: नहीं,
1: हैं?
0: मेरे घर में देखिए,
1: पोइट्री वगैरह लिखते हैं क्या?
0: ये भी लिखता हूँ, इसमें कहते चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, हमने कुछ गीत लिखे हैं, समझे, हम शुरू शुरू में मतलब इंडस्ट्री में जब आए
1: जी
0: तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर ही के तौर पे आए थे। फनी मजूमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे,
1: तो अभी भी
0: समझे।
1: आप क्या क्या करते थे?
0: क्या कमाल है वो, मैं अपने

0: मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूँ। जब चीन ने अटैक किया था वो 1962 की बात है शायद समझे, उस वक्त हमने काफी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, 4 एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं समझे। और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं, ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
1: बस
0: तो ये तो
1: भाई
0: आ जाती है तो लिख देते हैं समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता हूँ, और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ। तो हम अपना जी बहलाते रहते समझे। तो वो है, बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है समझे। और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो सारा एटमॉस्फियर रेडिएशन से सरचार्ज हो जाएगा, तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है समझे। तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं, और वायदा किया अपने आपको को 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है।
2: मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुन के सचमुच बहुत अच्छा लगा।
1: जी, बहुत अच्छा लगा।
2: सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम
1: जी
2: किया,
1: हाँ,
2: अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहां मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई सन 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले, तू बोला तो मैं चला।
3: सच कहा विक्रम, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं।
1: श्रोताओं, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता। वैसे ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की और बन गए निर्माता निर्देशक, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं?
2: प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि ढेंटन टेन, वो फिल्मों में नहीं होता है, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं।
1: आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की
2: ये
1: फिल्म
2: उस दौर की फिल्म है ना,
1: जी हाँ।
2: कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा, फिर क्या होता? क्या होता? अमिताभ बच्चन आता है और मोटरसाइकिल चलाता है, और उसके बाद क्या? डेंटन टेन, बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे, सुनते थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो ढेंटन टेन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी।
1: जी हाँ।
2: और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा, आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ।
1: बताइए।
2: वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का
1: क्या
2: होता,
1: बात है, बहुत प्यारा गीत है।
2: ना मानता ना रूठता,
1: वाह
2: ना
1: वाह,
2: बार बार हंसता
1: ना
2: ना जार जार रोता।
1: तो अमर जी, आपने इतने प्यारे गीत को याद दिलाया है
2: जी,
1: सुनना पड़ेगा, और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को।
2: तो चलिए सुन लेते हैं।

0: अमर जी
1: जी,
0: क्या गाना, वाह। बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी
1: 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बहुत कुछ खाली हो गया। लेकिन तो खैर, सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, ये अटल सत्य है। बहरहाल 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
0: प्रकाश मेहरा
1: साहब का। और फिर ये आ गए मुंबई। आए तो थे ये गीतकार बनने, मनीषा जी
0: जी,
1: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं, फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे, उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी,
0: शशि कपूर साहब की,
1: बिल्कुल। और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
0: कौन सा वाला गाना?
1: हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो था। और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
0: याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आपकी जुबान से।
1: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में, मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया,
0: जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर।
1: मनीषा जी, फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
0: बिल्कुल,
1: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए।
1: अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
0: जी।
1: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
0: जी।
1: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जला के, प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया, एक और था गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती हैं गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
0: आप ही बता दीजिए ना।
1: गीतकार गुलशन बावरा थे वो।
0: क्या बात है,
1: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा।
0: देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई।
1: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मैं तो रोमांटिक फिल्मों का हीरो हूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की
0: जी।
1: अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने, सलीम साहब ने उनसे।
0: अच्छा।
1: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए। और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास, लेकिन राजकुमार साहब ने तो

0: अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
1: जी,
0: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे,
1: यही मुंबई में।
0: मुंबई में और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
1: जी,
0: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे। तब
1: अच्छा।
0: जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
1: क्या बात है, कहां से कहां, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
0: अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार।
1: जी हाँ।
0: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
1: मनोज कुमार,
0: उसमें खान का किरदार था।
1: अच्छा।
0: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे।
1: वाह।
0: और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
1: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओं, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अभी सुनवाएं इस रिकॉर्डिंग को।
0: बिल्कुल।
1: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी ने।
2: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ, मुंबई किस उम्र में आया?
3: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। फिल्म डिवीजन में इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थे, ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलने। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को, मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहां दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पर बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे, वहाँ मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का, विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है, अभी माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है।

0: आपके ग्रुप में है। कहने लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है भाई, काबिलियत है तो करो यार, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला तो विनोद ने बोला जब मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आपके यहाँ काम करे मुझे कोई एतराज नहीं। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
1: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे?
0: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
1: तो प्रकाश जी आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री?
0: आए थे राइटर बनने। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वहीं हमारी फिर दोस्ती हो गई काम करते करते बोनसागर के। और उसके यहाँ तो हमारे दोस्त थे इंदुभूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदुभूषण से दोस्ती हो गई। इंदुभूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदुभूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदुभूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे एक साल मोटरसाइकिल के साथ और काम करने दो, व्हील मेक की फिल्म। और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से नमोन सहगल के, वहां से एस एम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब एक साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। एक साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदुभूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की, नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जो मोनसागर के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई, किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपा राय जयराज को लेके अमर सिंह राठौर बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, एक फीएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोनसागर का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा कि यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तू निकल नहीं सकता, जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज टू बिलीव इन डेस्टिनी, आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसियरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो सीने बन जाएगी शुरू हो गई। पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी रिलीज के एक महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांदरा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था, आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपए कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वाकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, कि हसीना मान जाएगी भी वो थे, हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे तो अपने घर से लाके हमें देते थे। बोले मगर एक हफ्ते में ले लूंगा और हम एक हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वाकर से पूछा कि एक ऑफर है नजाड़ वाले की और एक ऑफर है मलिक चंद कोचड़ की, उनकी 4 ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है? एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वाकर ने कहा सब कर ले।
1: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तरह तरह के काम किए आपने।
0: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
1: जी,
0: बिकॉज आई यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पर सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
1: तो ये जो जंजीर की हम बात करें,
0: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे
1: जी,
0: बट एज ए हीरो

एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उनकी सारी उम्मीदें थी, वो भी रंजन की फिल्म बंदेहार बन गई थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत की, तो फिर मैंने जया से बात की कि वो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा भाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा भाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, दो ही नाम लिए जाते थे पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे, नहीं मैंने केदार कपूर को बोला है वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, वो दे दिया। और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया, तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली है इंस्पेक्टर और पठान के आगे? बोले यार आगे उसे मालूम है वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया, आपको उस वक्त भी

मैंने केदार कपूर को बोला है वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, वो दे दिया। और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली इंस्पेक्टर और पठान के आगे? बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार, इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे। और हंसा बहुत वो। मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इंद्रजीत, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी ये लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना कीप ऑन चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी, इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाई। मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे, तो राज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा गरन बुलाते थे, या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने राज जी चार

पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। सोमनाथ स्वामी विभिन्न पूरे पर्व पूरे देश में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल 11 मई को बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील के अंतर्गत सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 354 करोड़ रुपए के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर को कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड स्थित पांडा तराई पहुंचेंगे, जहां वे डोंगरिया खरहट्टा में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में बीती रात

0: हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रदेश में इन दिनों आयोजित सुशासन तिहार के तहत जगह जगह शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल 11 मई को रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर 12 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड़ेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
2: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1,200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर चिट्ठी।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत, विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

0: लक्ष्मी होगा भजिया हरे हरे कान्हा जा कान्हा जा कान्हा जा।
1: तेल मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत पथ किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
2: एक बेमिसाल शायर
3: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
2: एक शानदार

0: हर शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद।

मदरफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी, इस फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 चोर फिल्म का ये गाना बना, कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब डीजे यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार। दिन का 1 बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय, कितना मिलता जुलता है ये समय। और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफर में। तो सुरीले सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता सवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतजार। तो यह है आज की इबारत और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मजेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखें इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफर हो सकता है, पर आपके गीतों का हमने इंतजार किया, एक आधी गीत दिखा सारे गीत तो हमें नजर नहीं आए। चलिए, आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की भारत में शामिल शब्द समय, हर पल, दुनिया का मेला, गीत, बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का, दिल, नगमा, फसाना, कौन सा वो ही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी, इंतजार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया।

एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने में, बहार की पायल तो झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं। ये अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर सुरों के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की तरह प्यारी और पूर्णमय। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कह रही है कि आज के अर्थपूर्ण गद्यांश के लगभग सभी शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द बिना झिझक चुन रही हूँ, वो है माँ और लोरी, क्योंकि आज मातृदिन है तो इन दोनों का वात्सल्य भरा जिक्र होना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है। समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है। जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। हा हा हा, क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी फरमाइश से जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं। देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है। सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी, और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर, जिसमें अक्सर जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ। अब तो खैर डिजिटल घड़ियों का जमाना है, और आपको ये बताना है कि आपको पहले पहल घड़ी से परिचित किसने करवाया था, और वो डिजिटल घड़ी थी या घंटा मिनट सेकंड बताने वाली सुइयों वाली घड़ी थी, ये बताइए। और ये गाना सुनिए, बताइए कि प्रमुख कलाकार कौन है।

तो भाई जीवन का पहिया चल रहा है और इस संगीत को सुनने का आनंद लेते रहिए, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत माँ, सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता, और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है, दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह, बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफर। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है, ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर, जो बहुत ही खास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है, मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपए पहली बार कमाए और 245 रुपए की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांधकर समय देखा, जिसमें सेकंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसा ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:30 2 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के जमाने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी, जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज आवाज में टन की आवाज होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताजा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है,

घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है, उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

का गाना है बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक टिक की आवाज सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नजर उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही है कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर, संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत, स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में, शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टनटन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और जरा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत।

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूं। जी हाँ, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात। अपनी HMT के रिस्ट वॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद

0: किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी HMT की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ। और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे। और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन्होंने उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी, अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूं क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है?
1: आई बहार आज, आई बहार बहार आज, आई बहार गुलशन में, गुलशन में दिए

बहार आज आई बहार। आज फूलों का बुलबुल है दिया कोने को है, आज फूलों का बुलबुल है दिया कोने को है, आज थालों में तंदल आने को है, आज प्यालों में उबलन।

0: नहीं आइए शादी नहीं आओ दुनिया बदलने का दिन आ गया लिए फूलों के हार बहार आज आई बहार बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिवहरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार, बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चप्पर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है, उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना, बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की।

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा वगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में मां बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है मां, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का काटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15 बजे, घड़ी मिनट दोनों काटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद कहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

मित्रों, किसी भी बच्चे का संसार से पहला परिचय होता है उसकी माँ, जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ, और चमकती आंखों से प्यार छलकाती, मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से भर देता है।

ममता का अमृत रस बरसाता माँ का आंचल संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्रछाया में जीवन बिताने की कामना

हर कोई करता है। बच्चे की खुशियां, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियां हो या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदाई होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आंखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

माँ की ममता निस्वार्थ है, बच्चे के लिए सुख की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है, इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

जगत में हर बच्चे के साथ उसकी माँ का आंचल हो, ममता हो, दुलार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एन्द पोरुळैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய்

0: के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100

0: करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके चार परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: माँ हमें मामा जी कहना।

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी। नु, नु, नु, नु, नु, नु।

0: मामा जी न देख तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता, एक तू ही क्या मुझको भी अब

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

मोहम्मद रफी का गाया। औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरुड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को। याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहर टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

0: आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक

0: एस कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
1: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
2: कहिए माँ जी।
1: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
2: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
1: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
2: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
1: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा ये लड़की नीला।
2: जी आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
1: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना, करा दोगे ना?
2: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: मेरी बात याद रखोगे ना?
2: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
3: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
4: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
3: लखपति? अरे क्या कह रहा है?
4: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
3: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
4: है बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
3: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
4: तुमने कहा था ना मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिपकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
3: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
4: वही तो मैं सुन नहीं पाया, उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
3: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
4: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
3: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
1: क्या किया जाए कंद स्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुल ऐसा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
0: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
1: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
0: तार? कैसा तार?
1: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार। इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
0: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। हे भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
1: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
0: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
1: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
0: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ओह, ये कैसी मजबूरी है! शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए।

0: माँ जी
1: आओ कंदे स्वामी आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया। कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है? तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ हमारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो, तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो

0: ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंधु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये, लेकिन सुनो, होशियार रहना।

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए ये नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? ओह अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछें हैं, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन? अंकल सिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो।
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भागकर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माँ जी
0: ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: क्या कहा माँ जी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब?
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुँचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो। क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए
1: इंस्पेक्टर साहब, इसी शिंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश शिंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या सिंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, सिंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे, अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये शिंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मार

0: कर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। माँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। माँ, माँ, मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ।

छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं।
1: नीला, देखो तो कौन आया है।
0: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंदे स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये ना समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूं? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चम्बलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती। पिटारा।

0: एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जा

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी,
1: ये पिक्चर अच्छी बने, और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
2: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
2: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
2: हीरोइनें भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
2: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया, और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे,
2: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ।
1: दिलीप कुमार साहब का हीरो है। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास, डायरेक्ट करिए मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
2: कनेक्शन
1: सब कुछ। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगाऊं, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
2: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: इज वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे, यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ, मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था तभी, उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने कहा पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर जाइए। आए वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास मैं जाता रहा, तो ऐसे अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूँगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आपकी कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ, किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं। इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था, वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन मेरे इप्टा के हैं, मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे, उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: शूटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी। कुलदीप याजस में बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में।
1: जी
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर हनी ईरानी। हाँ
0: तो हमारे बाकी लोग भी हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए आज दोपहर कहाँ मिले। तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे रमन राकेश बेदी अवतार गिल भरत कपूर हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे चाय वाय पीते थे गपशप मारते थे एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं। मैंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है कुछ गड़बड़ है सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो राइटर तो बहुत अच्छे हैं अलग हो गए हैं डायलॉग तो ये लिखते हैं तो बाकी देख लेंगे चीजें अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं।

0: फॉलो कर लीजिए, उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने उसमें कुछ हुआ था, यश जौहर की फिल्म में दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना,
0: उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जौहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जौहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं अगर आपको शूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ
0: लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया। तो गाने वाले अब साहब, उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर होने चाहिए, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब।
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं है।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, कर लीजिए। वो मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे
0: क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग।
1: हाँ हाँ।
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ।
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने की। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया।
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं कभी पिक्चर बनाते, वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता सर।
1: जी।
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब।
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया, थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी सॉरी शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा,
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे, उन्होंने सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुकर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुकर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जय जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीरे की 2 बेटियां उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है, तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
0: प्रदीप को लेके,
1: लेकिन वो नहीं बन पा रही, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको मतलब रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
0: दिलीप साहब को बता दी। ओहो हो, गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी

0: वहाँ के थे पिशावर के उस
1: जी
0: तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला। तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी, जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा, यार के बदले जरा या
1: अच्छा
0: जारा,
1: जी, इसीलिए वो सागर यारा
0: सागर
1: साहब की
0: यारा है,
1: किताब में आई।
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस
0: और
1: तरह
0: जावेद
1: फिल्म
0: ने।
1: दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: ऐसे ही होता था।
1: एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ, बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
0: जी।
1: तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ ओ ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये तो नहीं हो सकी और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचते हैं। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
0: जी,
1: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा यह है, ये हमारे सोचा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
0: ओके।
1: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों बाहर आए बहुत खुश थे। तो
0: पैसों वगैरह की बातें,
1: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों जाए, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
0: वाह,
1: ओके हो गया सब, हम निकले। हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए।
0: वो
1: उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
0: हॉस्पिटल ले गए,
1: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा कि

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि वो मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा

0: किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया।
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ, वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय

0: दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा, तू
1: गजब।
0: ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ,
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
1: जी जी जी
0: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म और 1-1.5 साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
0: लोग देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा, ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग, ओके। जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
1: जी जी जी
0: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। डीजे प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF1 विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंगरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथ

0: विद्यार्थियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया महावीरगंज शिवपुर कनकपुर लुर्गी टकिया मिंढारी प्रेमनगर कोटराही भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये लक्ष्मणगढ़ जगन्नाथपुर सायर सस्कालो पंडोपारा सुखरी भंडार कोरवापारा बरपारा कठबुड़ा कंडराजा बैरडाण पतरापारा दांतीढाब घोराघाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर चरईमारा रानी कोम्बो सारंगडाण फड़ामाचा हरदीझरिया राजा आमा महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल की छाल धर्मजयगढ़ कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आम गांव पोटिया करोंधा प्रेमनगर बेहरामार औरानारा कुड़ेकेला सिंघी छाप डोंगा भावना हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी मुकुआ जुनवानी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये बंगूरसिया नवागांव जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हारपाली पथरीपाली दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरी ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये ओड़ अमलोर ताराझड़ डडईपानी नगरार खोलापारा जिडार छिंदौला तौरेंगा कावारामा डूमरघाट कोदोमाली कोनारी लूठापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धमतरी वन मंडल के दुगली में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये चार गांव जबर्रा तुम्बहरा डूंगरडूला गज कन्हार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोड।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या की 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म फरेब से। शब्द रचना इंदिवर की है और जतिन ललित का संगीत है।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में

0: विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेब्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेब्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, महिला सभा कार्यक्रम हेतु एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता क्रम फोन पर आधारित है। यह माह के दूसरे मंगलवार यानी 12 मई 2026 को 5:35 से इसका प्रसारण किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 11 मई 2026 को सोमवार को शाम 4 बजे से 4:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा, आंखों की देखभाल कैसे करें। विषय विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ज्योति आचार्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। हमारे नंबर है, बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752 और फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा।
0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर के नवीन भवन में दिनांक 11 मई 2026 को समय 10:30 से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, जिला बिलासपुर से व्यवसाय विद्युतकार, फीटर टर्नर, मशीनिस्ट, शीट मेटल वर्कर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, कोपा एवं वेल्डर के उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी अपने समस्त दस्तावेजों के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु प्रशिक्षणार्थी आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर में कार्यालयीन समय पर अप्रेंटिसशिप विभाग से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म कच्चे धागे से। स्वर दिया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खान ने।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: श्रोताओं, महिला सभा कार्यक्रम हेतु एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता क्रम फोन पर आधारित है। यह माह के दूसरे मंगलवार यानी 12 मई 2026 को 5:35 से इसका प्रसारण किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 11 मई 2026 सोमवार यानी कल शाम 4 बजे से 4:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा, आंखों की देखभाल कैसे करें। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ज्योति आचार्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752, हमारे फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म दिल तो पागल है से। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की रचना, उत्तम सिंह का संगीत है।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आखिरी गीत लीजिए सुनिए, कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेश से। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है।

फिल्म परदेश के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म दस्तक से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मदन मोहन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पंढरपुर सिटी से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक, आशु जेटली, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीना विविधा वंडलकर, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद अजरा तबस्सुम, रायपुर से अनई और बनारस से है इनके साथी अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया अंसारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, पथरिया भरेवा से हमारे श्रोता साथी हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, बोटसराय नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी और इनका पूरा अब्बासी परिवार, भाटापारा से विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा, हर्ष, कुमकुम और योगेश्वरी साहू, बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, अजीत और अमित वर्मा, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और अरविंद उत्खडसे, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा और अविका सोनवने, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव, खेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, दतरेंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका, ममता अरोड़ा, सोंगा जिला धमतरी से रीना सेन, पिंकी और कांति सेन, बिहार से वसीम अक्रम, शबनम, गुड़िया खातून, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि शिंदे, श्रांत में है कृष्णा घोटके, कोरासी भैंसा से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज, सुष्मिता और दीपिका साहू, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत। स्वर दिया है कविता कृष्णमूर्ति ने, एसएच बिहारी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनिए। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर के नवीन भवन में दिनांक 11 मई 2026 यानी कल समय दोपहर सुबह 10:30 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला आयोजन हो रहा है, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं जिला बिलासपुर से व्यवसाय विद्युतकार, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, शीट मीटर वर्कर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, कोपा एवं वेल्डर के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों अपने समस्त दस्तावेजों के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु प्रशिक्षणार्थी आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर में कार्यालयीन समय पर अप्रेंटिसशिप विभाग में संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, यह जानकारी कल यानी 11 मई 2026 को सुबह 10:30 पर आप कोनी में संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन वर्मा, पल्लवी वर्मा और राजेश्वरी वर्मा, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्हार, बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजल मलिक, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता डब्बू डब्बू, सुभाष योगी, परेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजोत, ये हमारे श्रोता साथी हैं। भटिंडा भुज से, बुल्ढाना से अमोल मानकर, शोभा, दीपाली, श्लोक मानकर और इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, साथ में है मंगला शाह और राजेंद्र जी शाह, अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना, प्रणय, प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और जेबा अजीम, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अजीज, वाशी महाराष्ट्र से विठल सुरेशे, सुषमा पारिधि और मायरा सुरेशे, राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार, मदनपुर से हमारे श्रोता साथी हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, लुथरा खमरिया से अक्रम, अमीन, अर्श और आतिका, जेल रोड बक्सर से असलम आजाद, मुस्तफा तन्हा, शमशुल हक, लच्छनपुर से टेकराम यदु, विकास यदु, हेमलता और गीतेश्वरी यदु, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल, साथ में है धमधा सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, चिरमिरी कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण, दिनेश, कालिंद्री लहरे। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म राजा और रंग का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का ये भाग अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:20 और संध्या 7:00। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:00 हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब आपको आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आज शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। आज कानून की बात में जानकारी दी जाएगी उत्तराधिकार अधिनियम। जानकारी देंगी सुश्री मनीषा ठाकुर, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर। भेंटकर्ता होंगे विवेक पांडे, प्रस्तुति होगी डॉ सुप्रिया भारतीयन की और रिकॉर्डिंग सहयोग सौरभ केसरवानी का होगा। शाम 7:20 पर प्रतिदिन की तरह सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इसमें बेरा के गोट का विषय होगा बीजा के उपचार और भंडारण जरूरी होती। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। शाम 6:20 और शाम 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने। रात 8:00 सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान के गाए गीत और गजलों को। रात 8:15 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीकंधा का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से रात 11:00 तक। श्रोताओं, आगे की जानकारी इस अंतराल के बाद।

0: कर इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम अमराई। कलाकार होंगे पंचराम मिर्झा, भागवत सप्रे और उनके साथी। सुबह 10 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम तुहार गोट हमर गीत का, प्रस्तुति होगी महावीर बरगाह की। प्रातः 6:30 पर खेती की बात और 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नौ विहान। कल नौ विहान में चर्चा की जाएगी कौशल भारत मिशन विषय पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होगा दिन में 11 बजे। 11:30 से शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। कल शाम 5 बजे कार्यक्रम युवा जगत में सुनिएगा आज की बात में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी, साथ ही सुनिएगा क्रम वैज्ञानिकी और प्रौद्योगिकी। शाम 6:20 और शाम 7 बजे प्रतिदिन की तरह आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। शाम 7:20 पर ग्राम सभा प्रसारित की जाएगी। कल इसमें बेरा की गोठ में आपसे बातों का विषय रहेगा वानिकी फसल के नर्सरी और रोजगार। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा ग्रीष्मकालीन सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एकता ताम्रकार, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। भेंट करता होंगे बैसाखू भैया। कल रात 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे जावेद बशीर। रजनीगंधा का आनंद लीजिएगा रात 8:15 पर। श्रोताओं, ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी। इसमें आज आप सुनेंगे बालोद जिले की चिट्ठी। आलेख है जयप्रकाश सिन्हा का।
3: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बालोद जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, जनगणना 2027 के तहत बालोद जिले में 1 मई से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान प्रगणक लोगों के घर घर जाकर आवासीय और गैर आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जिला कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा ने मकान सूचीकरण का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करने वाले 50 प्रगणकों को संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये भविष्य की योजनाओं और राष्ट्र निर्माण का आधार है। श्रोताओं, आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में भी 1 मई से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते 7 मई को गुरूर विकासखंड के पलारी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 256 में से 73 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को ध्वनि श्रवण यंत्र और छड़ी का वितरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को निक्षय पोषण आहार और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं अर्जुनी गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में अर्जुनी क्लस्टर में शामिल 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। इस मौके पर उन्हें शासन की

0: विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू ने ग्रामीणों को सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने बीते 2 मई को बालोद जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बालोद जिला और सत्र न्यायालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यायमूर्ति श्री सिन्हा जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बालोद जिला और सत्र न्यायालय की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं ग्राम सिवनी में संयुक्त जिला कार्यालय के पास निर्माणाधीन जिला और सत्र न्यायालय के भवन में अधिवक्ता कक्ष के दायरे को बढ़ाने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। श्रोताओं, जिले के डोंडी, भरीटोला और कुआं गोदी लघु वनोपज सहकारी समिति में 4 मई से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। जोनल अधिकारी और रेंजर जीवनलाल भोंडेकर ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 प्रति मानक बोरा मजदूरी निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने संग्राहकों से कहा है कि वे 50-50 पत्तों के बंडल बनाकर तेंदुपत्ता फड़ों में जमा करें। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बालोद जिले के छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष 10वीं में करीब 66% और 12वीं में 77% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अर्जुंदा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र जीत गजेंद्र ने 95% अंक हासिल कर जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उमरादाह स्थित ब्लेज अकेडमी की छात्रा वंशिका शर्मा 10वीं की परीक्षा में 97.17% अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रही हैं। जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिला स्तरीय टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र छात्राओं के अलावा उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। श्रोताओं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में बालोद जिले की हिमांशी साहू ने राज्य स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। हिमांशी कन्नेवाड़ा स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा है। जिला कलेक्टर ने इस उपलब्धि पर जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हिमांशी को सम्मानित किया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे बालोद जिले की चिट्ठी। आलेख था जयप्रकाश सिन्हा का। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। केंद्रीय गृह मंत्री हर संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे बर देश के तैयारी के समीक्षा करें और केंद्र सरकार ह राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेता मन के घोषणा करिन। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरडीह ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में मिले तीसरैया स्थान। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिही। मंदिर में 9 मई ले ही 3 दिनी होतात्मक महारुद्र यज्ञ के आयोजन करे जावत है, जेमा लगभग 1,25,000 आहुति चढ़ाए जावत है। ये महायज्ञ अभी के वैश्विक परिस्थिति में शांति और मानुष कल्याण बर करे जावत है। अमृत पर्व के मुख्य आकर्षण काली 11 मई के होही, जब मंदिर के शिखर में प्रधानमंत्री डहर ले 11 पवित्र तीरथ ले लाए गए जल ले कुंभाभिषेक करे जाही। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरा देश में स्मरण उत्सव के रूप में मनाए जावत है। एकरे अंतर्गत काली 11 मई के बालोद जिला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में स्मरण उत्सव के आयोजन करे जाही। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा बताएं कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में होवैया ये कार्यक्रम है श्रद्धा संस्कृति और हमर देश के विरासत के सुघर संगम देखे बर मिली। उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बलरामपुर जिला के ऐतिहासिक स्थल

0: डीपाडी सामंत सरनामा घलो काली स्मरण उत्सव के आयोजन करे जाही। ए कार्यक्रम नवा पीढ़ी में सांस्कृतिक जन जागरूकता और स्वाभिमान के भावना ला मजबूत करही। प्रदेश में होइया नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई बर नामांकन के कारज काली 11 मई ले शुरू होही, जेन 18 मई तक चलही। नामांकन पत्र मन के जांच 19 मई के करे जाही। उम्मीदवार मन 21 मई तक अपन नाम वापस ले सकी। वोटिंग हा एके चरण में 1 जून के होही, जेकर परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। सुरैया मल्ला बता दन कि नगरी निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 पद समेत कुल 82 पद पर चुनाव होही। उहे त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1126 समेत पूरा 1228 पद पर चुनाई होही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे के देश के तैयारी के समीक्षा बैठका करीन है। नई दिल्ली में आज एक बैठका में श्री शाह सरकारी एजेंसी मन के तैयारी के आकलन करीन, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, संसाधन के तैनाती और एजेंसी मन के बीच तालमेल के समीक्षा करीन। गृहमंत्री अवैया समय पर करे जावत बाढ़ निवारण उपाय के प्रगति के घलो समीक्षा करीन, जेमा जरूरी ढांचागत परियोजना के बचाव, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठका में जन जागरूकता, जान माल के नुकसान ल रोके बर निर्माण, जरूरी राहत सामान और इलाज के तैयारी बर पर्याप्त भंडारण ल पक्का करे ऊपर गोट बात करेगी। प्रदेश में अभी आयोजित होवत सुशासन तिहार के तहत जगह जगह समाधान शिविर लगा के लोगन के समस्या ल मौका में ही निराकृत करे जावत है। यही कड़ी में काली 11 मई सोमवार के रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाही। एमा बिहनिया 11 बजे ले मझनिया 1 बजे तक आवेदन झोंके जाही। छत्तीसगढ़ में आने आने न्यायालय में काली लोक अदालत के आयोजन करेगी। एदारी के लोक अदालत में 7,92,000 ले ज्यादा मामला के आपसी समझौता ले निराकरण करेगी। उन्हें 52,14,00,000 रुपया ले ज्यादा के राशि के अवार्ड पारित होइस। लोक अदालत के शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा मुंगेली जिला न्यायालय ले करिन। ए मौका में प्रदेश के सब्बो जिला वर्चुअल माध्यम ले जुड़े रहीस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी के छुट्टी में देश के सब्बो स्कूल मन में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर के आयोजन करी। एक हफ्ता के एक शिविर भारतीय भाषा मन में गोटबात के तरीका सीखे, शब्द ल जाने, अपन परिचय देना, असल जिंदगी के बातचीत और संस्कृति के बड़े ऊपर केंद्रित होही। एकर उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण ल बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कोती। केंद्र सरकार है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेता मन के घोषणा कर दे है। देश भर ले चुने गए 42 ठन पंचायत ल ए इनाम दे जाही। पंचायती राज मंत्रालय है बताइस है कि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 3 जून के नई दिल्ली में रखे जाही। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के बगीचा तहसील के सरडी ग्राम पंचायत ल स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में तीसरैया स्थान मिले है। मंत्रालय है बताइस कि विजेता पंचायत मन ल श्रेणी और स्तर के आधार में 50,00,000 रुपया ले लेके 5,00,00,000 रुपया तक के वित्तीय प्रोत्साहन मिली। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दे जावत है। धमतरी जिला के भटगांव है जल्दी च राज्य के पहली अत्याधुनिक बकरी ब्रीडिंग और रिसर्च केंद्र बनाइया है। कलेक्टर के पहल में यहाँ रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करे जाही। ये केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच और तुरते रोग निदान के सुविधा मिली। खास खास नस्ल के छेरी ल बचाए और बढ़ाए बर घलो काम

0: करे जाही। किसनहा और युवा मन बर प्रशिक्षण के व्यवस्था होही। पहली चरण में 10 ले 12 स्थानीय युवा मन ला रोजगार मिलही और पशु सखी मन ला तकनीकी प्रशिक्षण दे के ओमन ला आत्मनिर्भर बनाए ऊपर विशेष जोर दे जाही। बिलासपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ह शक्ति जिला के चंद्रपुर थाना में पदस्थ ASI SN मिश्रा ला 20,000 रुपया के घूस लेवत रंगे हाथ पकड़े हे। आरोप है कि ASI ह बालपुर के रहिया एक झन मनखे ला कड़ा कार्रवाई ले बचाए बर 40,000 रुपया के रिश्वत के मांग करे रहीस। आज मदर्स डे में रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ह महिला बंदी मन बर वीडियो कॉलिंग के सुविधा शुरू करे हे। ए सुविधा ले अब महिला बंदी मन अपन परिवार और वकील ले सीधा वीडियो कॉलिंग ले गोट बात कर सकी। वीडियो कॉलिंग सुविधा बर जेल विभाग और BSNL के बीच अनुबंध हो है। उन्हें आज जेल परिसर में हुए निश्चय कार्यक्रम में कौशल विकास के प्रशिक्षण पूरा करैया 38 महिला बंदी मन ला प्रमाण पत्र दे गई। संगे संग जेल में अपन महतारी संग रहत 14 झन लड़का ला विभाग को तिले खास उपहार घलो दे गई। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा प्रदेश के जम्मो महतारी मल्ला मातृ दिवस के शुभकामना दिन हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेले जाही। ये मैच संझा 7:30 बजे ले शुरू हुई। उन्हें 13 मई बुधवार के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होही। दोनों IPL मैच पर प्रशासन ह सुरक्षा के कड़ा तैयारी करे हे। और अब जानथन मौसम के हाल। मौसम विभाग ह काली 11 मई के प्रदेश के एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना जताए हे। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग हवा गर्रा चले और गाज गिरे के चेतावनी दे हे। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा के एक चक्रीय चक्रवाती घेरा ह मन्नार के खाड़ी और ओखर ले लगे श्रीलंका के ऊपर फैले हे। एकर अलावा एक ठन निम्न दाब के क्षेत्र ह दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी के ऊपर अवैया 48 घंटा में बने के संभावना है। एकरे असर ले काली प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का वर्षा हो सकत है। आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। प्रधानमंत्री काली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वां वर्षगांठ के मौका में रखे गए सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग ली। केंद्रीय गृह मंत्री हर संभावित बाढ़ और लू के स्थिति ले निपटे बर देश के तैयारी के समीक्षा करें और केंद्र सरकार हर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के विजेता मन के घोषणा करें। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरडी ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में देश भर में मिले तीसरैया स्थान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का गीत लीजिए सुनिए फिल्म लाडला से। स्वर दिया है उदित नारायण और ज्योत्सना हरदीकर ने, समीर की रचना है, आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर कौसर, रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हुसैन रजा, गौसिया फातिमा, कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, ये हमारे श्रोता हैं धमतरी से, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी कल्पित चौहान, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोर्ड के, नंदा हनुमान बोर्ड के, उत्तम जमदाड़े, गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी, लोहारीडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई, अंबागढ़

चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस रिहान, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरी, मारुतराव पांचाल, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी और निखिल वर्मा, महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश गवहाणकर, साथ में है वैशाली, शैलेश गवहाणकर, श्वेता, सुमित, ध्वनि गवहाणकर, ग्राम गतौरा से बोधीराम आर्यन, शंकर, अमन, सूरज राठौर, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय पांडे, संतोष यादव, जितेंद्र श्रीवास, चंद्र प्रकाश लहरे, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रिहान और फैजान मोहम्मद, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमारा और गौरी सुरलकर, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, नैला बोटसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, उमा, मीनाक्षी, अंजुलता और विष्णु तिवारी, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, साथ में है रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, हसदा से कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहानकर, निर्मला विशाल नवहानकर, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, कलेश्वर सिंह, सुमार साय, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु, तासु, सत्यम, आनंद और इनके साथी हैं, पश्चिम बंगाल से गुड्डी भगत और मुन्ना भगत, भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो, सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, ये है पंजाब से, तिलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा सुजाता पोहारकर, दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा, कवर्धा से राधेश्याम पांडे, विना, विनय शंकर, नयन और इनके साथी हैं, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा और इनके साथी हैं, मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार, साथ में है नरगिस खातून, बदलापुर मुंबई से विनोद, वीना और विविधा वंडलकर, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजपति, काजल, पूर्वी, हेजल, रेशमा और राजेश साहू, कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी, अनिकिता और अनिकेत चौहान, राजस्थान से धर्मेंद्र शीपा, कपिल और पूजा परिहार, जागेश्वर दिवांगन, कचरीबाई दिवांगन, दीपक कुमार, जयश्री दिवांगन, ऋषभ, रीचा दिवांगन, ये हमारे श्रोता साथी है गंडई टिकरी पारा से, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र, महेंद्र, बेबी जोई, यामिनी और उमा तिवारी, राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण, दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा, डब्लू अंसारी, डुमराव से आसमा अंसारी, आमना और वली उल्ला अंसारी, राजकोट से राजेश, कृष्णा, प्रथम, स्वाति और ख्याति कुमारी, पैठन से सुरेश जाधव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद और सोनल जाधव, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां, मन्नत जहां, यवतमाल से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री और इनके साथी हैं। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म लाडला का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने का ये भाग अब यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम कानून की बात हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, कानून की बात। लीजिए इसमें सुनिए उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी। विशेषज्ञ हैं सष्टम जिला एवं अपर न्यायाधीश सुश्री मनीषा ठाकुर। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति है।

0: कानून की बात कार्यक्रम के आज के इस नवीन अंक में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती मनीषा ठाकुर जी। आप जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में सिस्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ होकर न्यायदान का कार्य कर रही हैं। मैडम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, आकाशवाणी परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार, सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हम आपसे सर्वप्रथम यह जानना चाहेंगे कि उत्तराधिकार से आशय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, कृपया सविस्तार बताएं।
1: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, अधिकार और दायित्व उसके उत्तराधिकारियों को मिलने की प्रक्रिया को उत्तराधिकार कहते हैं
0: जी।
1: यह अधिनियम हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख पर लागू होता है। हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार

0: व्यवहार को समान, न्यायसंगत और व्यवस्थित बनाना इसका उद्देश्य है। यह अधिनियम 17 जून 1956 को लागू हुआ था।
1: जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार के नियम किस तरह से लागू होते हैं, विशेष रूप से अधिनियम में हुए नवीन संशोधन के परिपेक्ष में कृपया हमें बतावें।
0: यह मानवीय स्वभाव है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में संपत्ति बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अचल संपत्ति जैसे जमीन, घर या व्यापार हो जो उसके पिता या दादा से उसे वारिसान हक में मिली हो तो ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने अपने स्वयं के आय परिश्रम से कोई अचल संपत्ति अर्जित किया हो तो उस संपत्ति को उसकी स्वअर्जित संपत्ति कहा जाता है।
1: जी।
0: यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत करता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का निपटारा उसके वसीयत के अनुसार किया जाता है। आगे श्रोतागण जानना चाहेंगे कि वसीयत क्या है, तो वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण के बारे में निर्देश देता है। वसीयत रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है तथा दो गवाहों से प्रमाणीकृत कराया जाना भी आवश्यक है।
1: जी हाँ।
0: अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी व्यक्ति को उसके पिता, दादा या परदादा से जो संपत्ति वारिसान हक में मिलती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके पैतृक संपत्ति का वितरण या विभाजन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत दिए गए नियमों के अनुसार होता है।
1: जी।
0: यहाँ पर उल्लेखनीय है कि महिलाओं व पुरुषों की संपत्ति का वितरण अलग अलग नियमों के अंतर्गत होता है। हिंदू नारी की दशा में अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत उसकी संपत्ति का वितरण होगा। जैसे यदि उसकी निर्वसती मृत्यु होती है तब अधिनियम की धारा 15 के अनुसार पहले क्रम पर उसके पुत्र, पुत्री, पति वारिस होते हैं, दूसरे क्रम पर उसके पति के वारिस आते हैं, तीसरे क्रम पर माता पिता को और चौथे क्रम पर पिता के वारिसों को और अंत में उसके माता के वारिसों को संपत्ति वितरित या न्यायगत होती है।
1: जी हाँ।
0: यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हिंदू नारी की संपत्ति जिसे उसने चाहे जिस प्रकार से भी अर्जित की हो, जैसे विरासतन हक में, विभाजन में, भरण पोषण के बकाया के रूप में, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात, दान पत्र या अपने कौशल या परिश्रम से क्रय की हो, स्त्री धन के रूप में मानी जाएगी और उक्त संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है जिसे वह किसी को भी दान, विक्रय या वसीयत कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: यदि कोई पुरुष की निर्वसती मृत्यु होती है तब उसकी संपत्ति का वितरण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत दिए गए नियमों के अंतर्गत होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया। हिंदू सक्सेशन संशोधित अधिनियम 2005 समझने के लिए हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को समझना होगा। धारा 6 हिंदुओं के सहदायिक संपत्ति के हित, अधिकार और वितरण या न्यायगमन संबंधी नियम है। इसमें सहदायिक संपत्तियों में हिंदुओं के अधिकार हित का वितरण और या न्यायगमन किया जाता है।
1: जी।
0: इस धारा के तहत पूर्व में सहदायिक संपत्ति पर जन्म से केवल पुत्र को ही अधिकार या दायित्व दिया गया था। इस धारा की विशेषता को समझने से पहले मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व की स्थिति पर प्रकाश डालना चाहती हूँ।
1: जी हाँ।
0: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व ओल्ड हिंदू विधि लागू था जिसमें यदि किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसके सहदायिक संपत्ति को उसके पुरुष वारिसों में ही वितरित किया जाता था। दूसरे शब्दों में केवल पुरुष वारिसों को उसकी सहदायिकी या पैतृक संपत्ति पर हक अधिकार मिलता था। इस प्रकार उस व्यक्ति की विधवा को उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था।
1: जी।
0: बाद में हिंदू महिला का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1938 लाया गया। हिंदू महिला का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1938 के तहत विधवा को अपने पति की संपत्ति पर भरण पोषण का अधिकार मिला, जिसके तहत वह सिर्फ जीवन पर्यंत उस संपत्ति पर अपना तथा अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती थी। इस अधिनियम में कुछ कमियां थी। विधवा अपने पति की संपत्ति पर अपना खर्चा चला सकती थी पर उसे बेच नहीं सकती थी। इसके बाद आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस अधिनियम में भी कुछ कमियां थी जिसे दूर करने के लिए बाद में लाया गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, जिसके द्वारा हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में व्यापक बदलाव हुए। सहदायिक संपत्ति में पुत्रियों को भी सहदायिकी माना जाने लगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में जो दिशा निर्देश दिए थे उस

0: उसके बाद धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में व्यापक बदलाव किए गए। इस बदलाव के बाद बेटी को भी सहदायिक संपत्ति पर पुत्र के समान जन्म से अधिकार दिया गया। इसके लिए पिता का जीवित होना अब आवश्यक नहीं रहा। यदि बेटी की शादी हो जाए तब भी उसका यह अधिकार समाप्त नहीं होता है।
1: जी हाँ,
0: अधिनियम 2005 20 दिसंबर 2004 से पहले जिस संपत्ति का विभाजन हो चुका है उस पर लागू नहीं होता है। अब इसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। जैसे किसी रजिस्टर्ड विभाजन पत्र के जरिए संपत्ति का विभाजन 2004 के पूर्व हो गया है, उस समय पुत्री को सहदायिक नहीं माना गया था, इसीलिए 2005 के संशोधन का लाभ पुत्री को नहीं मिलेगा। अर्थात 2005 के पूर्व पुत्री संपत्ति में बंटवारा नहीं मांग सकती थी। पिता की मृत्यु पर उसे अपने पिता के अंश में से ही शेष वारिसों के साथ हिस्सा मिलता था, जैसे पत्नी, पुत्र, माता के साथ पुत्री को अंश मिलता था। इस प्रकार 2005 के संशोधन के पूर्व पुत्री को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर पिता की मृत्यु पर ही अंश मिलता था, किंतु 2005 के बाद पुत्री को सहदायिक संपत्ति पर पिता के पुत्र के साथ बराबर बराबर हक प्राप्त होने लगा। वह अपने मैके के सहदायिक संपत्ति पर बंटवारा भी मांग सकती है। इस प्रकार यह संशोधन केवल कानूनी बदलाव नहीं बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक समानता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
1: बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपके द्वारा हम सबको प्राप्त हो रही है। उत्तराधिकार से संबंधित तकनीकी पहलुओं और क्लिष्ट विधिक प्रावधानों के बारे में हमें कृपया विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करें।
0: जैसे अधिनियम में एक शब्द बहुत यूज होता है, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। कोपार्शनरी प्रॉपर्टी या सहदायिक संपत्ति पैतृक संपत्ति को ही कहा जाता है, किंतु वो संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है।
1: जी,
0: समानता पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि पार्टीशन के बाद हिस्सा अलग हो जाता है तो व्यक्ति अपने हिस्से को वसीयत कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का कोई वारिस न हो तो उसकी पूरी संपत्ति शासन को चली जाती है। दत्तक संतान को भी जैविक संतान के समान प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, किंतु अवैध संतान को केवल अपने पिता के स्वार्जित संपत्ति में ही सीमित अधिकार मिलता है।
1: जी।
0: इसी प्रकार वारिस आते हैं जो किसी निर्वसती की मृत्यु पर उसकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, उन्हें वारिस कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वारिसों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्लास 1 के हेयर्स, इसमें पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, मृत संतान के बच्चे आते हैं। दूसरा है क्लास 2 के हेयर्स, इसमें पिता, भाई, बहन आते हैं। तीसरा है गोत्रज और चौथा है बंधु।
1: हम यह भी आपसे समझना चाहेंगे कि कुछ तकनीकी अवधारणाएं हमको सुनने में मिलती हैं, जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, सपिंड, सहगोत्र, बंधु एवं निषेध प्रावधान। इसके बारे में भी सरल शब्दों में हमें बताएं।
0: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र है जिसे मृतक के वारिसान न्यायालय के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसमें मृतक के कर्ज व प्रतिभूतियां उनके वारिसों को प्राप्त होती है।
1: जी।
0: इसी प्रकार प्रोबेट होता है, ये भी एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें यह साबित होता है कि वसीयत वैध है और उसे लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार गोत्रज पिता से जुड़े रिश्तेदारों को कहते हैं, जैसे पिता के भाई का पुत्र गोत्रज कहलाता है। इसी प्रकार आता है बंधु। बंधु माता से जुड़े रिश्तेदार को भी कहते हैं और पिता से जुड़े रिश्तेदारों को भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मामा का पुत्र बंधु कहा जाता है। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति संपत्ति से वंचित हो सकते हैं जो हत्यारा हो या जिसने अपना धर्म बदल लिया हो।
1: जी।
0: उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है।
1: बहुत ही सरल शब्दों में अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में हमें आपसे यह बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हो रही है। हिंदू व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबी व्यक्तियों के संबंध में उत्तराधिकार विधि के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं?
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत बहुत धार्मिक देश है। यहाँ कई प्रकार के पर्सनल लॉ प्रचलन में है, जिसमें मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ मुख्य हैं। मुस्लिम विधि की बात करें तो मुस्लिम विधि केवल मुसलमानों पर लागू होती है, इसके अधिकांश भाग अनकोडिफाइड हैं। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है, उसके जीवित रहते उत्पन्न नहीं होता है।
1: जी।
0: संपत्ति का बंटवारा कुरान और शरीयत के नियमों के अनुसार होता है। वारिसों के हिस्से पहले से ही निर्धारित होते हैं। व्यक्ति की मृत्यु पर पहले उसके कफन दफन का खर्च यदि उसके कोई पूर्व कर्ज हो या उसने कोई वसीयत किया हो

0: तो उसका एक तिहाई भाग पहले उसकी संपत्ति से निकाल लिया जाता है, फिर शेष भाग का बंटवारा होता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल एक तिहाई भाग ही वसीयत कर सकता है। मुस्लिम विधि में वसीयत लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है तथा उसे पंजीयन कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है, केवल वसीयत स्पष्ट होनी चाहिए। एक तिहाई से ऊपर की वसीयत किए जाने पर सभी वारिसों की सहमति आवश्यक है
1: जी।
0: मुस्लिम विधि में हिंदुओं के समान ज्वाइंट फैमिली की कोई उपधारणा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वतंत्र मालिक होता है, परिवार के सदस्यों का उसकी संपत्ति पर जन्म से कोई अधिकार नहीं होता है, मृत्यु पर ही वारिसों को अधिकार मिलता है। इसी प्रकार क्रिश्चियन लॉ में व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा वसीयत के अनुसार कर सकता है, इसमें व्यक्ति को विल करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। मुस्लिम विधि के समान फिक्स्ड शेयर नहीं होते हैं तथा भारत में क्रिश्चियन उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा नियंत्रित होता है
1: जी।
0: बिना वसीयत किए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी विधवा को एक तिहाई तथा उसकी संतानों को दो तिहाई संपत्ति वितरित होती है।
1: ये आपके द्वारा हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य जो धर्मावलंबी व्यक्ति हैं उनके बारे में भी उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान बताए गए। आपके द्वारा इस गूढ़ विषय के संबंध में बहुत ही उपयोगी जानकारी हम सबको प्राप्त हो रही है। कार्यक्रम के अंत में इस विषय पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, हम वह जानना चाहेंगे।
0: उत्तराधिकार अधिनियम केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह पारिवारिक संरचना, संपत्ति का अधिकार और सामाजिक न्याय का संतुलित तंत्र है
1: जी।
0: यह अधिनियम केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं करता, बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करता है। उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिविल मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। आगामी नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर व समस्त तालुका व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्पेशल लोक अदालत 18 जुलाई 2026 व 21 नवंबर 2026 को भी आयोजित किया जाएगा।
1: आप अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए इन जानकारियों के साथ आकाशवाणी बिलासपुर में आई और यह ज्ञानवर्धक जानकारी हम सबको प्रदान की है। हम आकाशवाणी परिवार और हमारे श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आपका और आपकी पूरी आकाशवाणी टीम का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद।
2: कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी। विशेषज्ञ थीं सुश्री मनीषा ठाकुर, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर। भेंटकर्ता थे श्री विवेक पांडे, अधिवक्ता। प्रस्तुतकर्ता थीं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। ये आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
7: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: दीदी नौकरी लग गई।
9: अरे वाह, बधाई हो।
10: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
8: हाँ दी, नया मोबाइल।
10: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
8: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
10: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
8: पर दीप,
10: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
11: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
10: अच्छा।
5: आरबीआई कहता है
6: सही।

0: प्रतिया बर्ताव करे आपका बचाव।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
10: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
9: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
8: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
10: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर होंगे स्मरण उत्सव। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। ये महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण कल 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश में स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल 11 मई को बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरण उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल डीपाडीह सामंत सरना में भी कल स्मरण उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम नई पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता और स्वाभिमान की भावना को सशक्त करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश में तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृह मंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल हैं। बैठक में जन जागरूकता, जान माल के नुकसान को रोकने के लिए निर्माण कार्यक्रमों और आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियों के पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल 11 मई से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं

0: त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से अब महिला बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से सीधे वीडियो कॉल के जरिए संवाद कर सकेंगी। वीडियो कॉलिंग सुविधा के लिए जेल विभाग और बीएसएनएल के बीच अनुबंध हुआ है। वहीं आज जेल परिसर में हुए निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण पूरा करने वाली 38 महिला बंदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे 14 बच्चों को विभाग की ओर से विशेष उपहार वितरित किए गए। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की समस्त माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की बगीचा तहसील के अंतर्गत सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में देश भर में तीसरा स्थान मिला है। मंत्रालय ने बताया कि विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB बिलासपुर की टीम ने सक्ती जिले के चंद्रपुर थाना में पदस्थ ASI SN मिश्रा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ASI ने बालपुर निवासी एक व्यक्ति से कड़ी कार्रवाई से बचाने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वहीं कोरबा जिले में SSCL कुसमुंडा के CMPF विभाग में पदस्थ लिपिक मनोहर लाल कौशिक को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के दल ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लिपिक ने एक खदान कर्मी से उसके PF के 5 लाख रुपए निकालने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। धमतरी जिले का भटगांव जल्द ही राज्य का पहला अत्याधुनिक बकरी ब्रीडिंग और रिसर्च केंद्र बनने जा रहा है। कलेक्टर की पहल पर यहां रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच और त्वरित रोग निदान की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्नत नस्लों के संरक्षण और प्रजनन पर भी काम किया जाएगा। किसानों और युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। प्रथम चरण में 10 से 12 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। पशु सखियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। IPL मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल 11 मई को प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का एक चक्री चक्रवाती घेरा मन्नार की खाड़ी और उससे लगे श्रीलंका के ऊपर विस्तारित है। इसके अलावा एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर

अगले 48 घंटे में बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य युवक झुलस गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने रायपुर मंडल के बिलासपुर रायपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल संरक्षा, परिचालन, कार्यप्रणाली, स्टेशन रीडेवलपमेंट, अमृत भारत स्टेशन परियोजना और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। रायपुर पुलिस ने एम्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14.5 लाख रूपये की ठगी के आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसी जिले के पचधारी पिकनिक स्पॉट में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित

0: इसी जिले के पचधारी पिकनिक स्पॉट में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर होंगे स्मरण उत्सव। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। आज मदर्स डे पर रायपुर केंद्रीय जेल प्रशासन ने महिला बंदियों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे फैमिली आ नए झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर रखना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
9: अब क्या करोगे?
7: तेरी वाइफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: आरबीआई कहता है
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
12: बेटा
11: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
12: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
12: चलो
11: कहाँ?
12: एडमिशन कराने।
7: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
13: ब्रो ये फटा है। सुन कते फते आप पुराने नोट को
14: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
13: वाओ नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा।
14: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
13: कूल रहो।
15: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम के इस भाग में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। लता मंगेशकर की आवाज है, अनजान की रचना कल्याण जी आनंद जी की ने संगीत दिया है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं दिल्ली से नीरज अग्रवाल सहज और श्लोक अग्रवाल, नानघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर रितु राजपूत, खंडवा से शालिया डावर बेबी हलीमा, जिकरा डावर आयशा खत्री, धर्मपुरी से ईशा और जाकिर खत्री, सावतपुर से ऋषि सेन रितेश कंचन और माही सेन, बीकानेर से नरेंद्र सुराणा कांतिलाल शरद मयंक विमल आभाणी, लालेंद्र होलेंद्र रोनी जैन प्रमोद दम्मानी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी आलिया और आयान, मंसूरी बाजार रोड से मोहम्मद जाकिर कमरुन्निशा और इनके साथी हैं, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर अब्दुल हक डावर जियाउल हक।

मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा से सोहन जोशी और पायल जोशी, सहारनपुर से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लवीस मुनेश देवी प्रजापति, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, टैगोर नगर नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, इंदिरा चौक तखतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभ्रचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, अडार नानघाट से माखन चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार, डोंगरगांव से हमारे श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीये, नथाना पंजाब से सीता गीता, हरजिंदर जिंदा, जसवीर, डौंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, आरती और प्रभा देवी तामुरिया, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भिलाई से नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद, शहनवाज अहमद सिद्दीकी। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सरगुजा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम परमान, लल्लू बल्लू, घनु, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकलराम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, समायरा, नायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नी, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े और इनका राजवाड़े परिवार, मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, नवीन, सौरभ, साइना शर्मा, साथ में हैं मैंडी शर्मा, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत, पानीपत से अनिल कटारिया, मंजूर, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जय जान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरु किरत और गुरु शब्द राहुल, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, बेबी आराध्या साहू, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी, विपुल कांबड़े, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा, सुरेश नारंग, पथिक और कृषिव, दयापुर बावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अवंतिका येले, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश कुमार, मुकेश कुमार साहू, सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, रेशमा थापा, सोनम, फातिमा थापा, आदिबा और आसमा थापा, भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म अनुपमा का ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, कैफी आजमी की रचना है, हेमंत कुमार का संगीत है।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू, देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गंडूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, सहारनपुर से कौशल्या जोशी, अजीता जोशी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन, सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीखराम दिवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका दिवांगन, सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, बाबूलाल चौधरी, निर्मलाबाई, सुनीता मालाकार, मुस्कान और योगेश मालाकार, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद नाज, बेबी चाहत, सहारनपुर से हसन नाजिया इब्राहिम, पलारी से पराग, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पूनाराम, कृष्णा देवांगन, बुड़गहन से राम दुलारी, प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, भानबेड़ा मुंगवाल से भारतराम पटौदी, जयंती, हेमंत, उमंग पटौदी, जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण, दिव्यांशु, खेमू ध्रुव, ये हैं महासमुंद से, नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य बाठे, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, दीपक, धनराज मरकाम, अकोला से वैशाली कटनकर, समर्थ, धनंजय कटनकर, कैदीमुरा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लीलू और रितु सिंह, उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, ये हैं लघान पंढरिया से, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश, ततरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नुखेलाल वर्मा, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश, वाशु, डॉली और पूर्वेश साहू, लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम कोलाम, कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेन्द्र और साहिल चंद्राकर, सौंगा मगरलोट से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, पार्थ और हेयांश चंदन, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता, पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, भावना, लक्ष्य, कोयल मल्होत्रा और नानकचंद मल्होत्रा, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म तारे जमीन पर से। शंकर महादेवन की आवाज है, प्रसून जोशी की रचना, शंकर एहसान लाय का संगीत है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम ग्राम सभा का। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा में।

राम राम संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राजू भैया के राम राम। भाई बहनी हो, आप मन अनुभव करत हो जहां संझा हो तहां हवा गर्रा आ लगते अन भाई ऐसा महाकालीन घलो होते और बिहन्ना हो तहां रग रग ले कसके घाम घलो करते थे। ऐसा मा हमार स्वास्थ्य में घलो कर विपरीत प्रभाव पड़ सकते थे। भाई बहनी हो, लेकिन ये जिन पानी गिरे है वो हमार किसान भाई मन पर उपयोगी घलो है। आज हम आप मन करा बीजा के उपचार के संग मा ओकर भंडारण के तकनीक एक बारे में गुठियाबो। फिर संगी हो जहाँ तक बात करथन के हमार नवा नवा जिन उतरे जिन तकनीक है वह हमार किसानी के बूता में बहुत ज्यादा सहायक हो है। कतको जी किसान भाई मन करा पूछथन गा के भैया आप करा कोदो के बीजा हवा का, राहर के बीजा हवा का, ऐसे के अमारी पटुआ के बीजा हवा का के तो नहीं है राजू भैया इसे कह लगते। तो संगवारी हो, अभी ले आप मन खरीफ फसल के तैयारी करेला शुरू कर देवा, खोज डारा बीजा ला पराधीन सपने हो सुख नाही। ऐसे रामचरित मानस में प्रसंग थे। तो भाई हमारे किसान घलो मन अब देखे कतको जी किसान भाई मन दूसर के भरोसा में हो गए जी, दुकानदार के भरोसा में हो गए। तो भाई आप मन ला बीजा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, स्वयं के पास बीजा होना है, ये बात के ध्यान करना है किसान भाई बहनी हूँ। और फिर जिन बीजा ला हम खरीद माँ बोबो वह पुष्ट हवा कि नहीं, स्वस्थ हवा कि नहीं, कोनो किस्म के माँ करगा है, कुदाइला है, ये मन मिहिर थोड़े है, ये बात के निमराई के बूता घलो हमार किसानी बहनी मन शुरू कर दे है और करना चाहिए।

काबर के स्वस्थ बीजा रही तबे हमन स्वस्थ पौधा पा सकबो। फिर अभी अभी चना गहूं के जहां तक बात करबो इकर लुवाई टोराई तंपन करें संगवारी पूरा करे हन। अगर आप गहूं ला भंडारित करना चाहत हो तो बढ़िया घाम मा ओला सुखो लो या उगदांत मा आप मन चाप के देखाओ, जब कुट ले बाजे तो समझ ले कि आपके जिन गहूं है चना है वह भंडारित करे के लायक हो गए है। तो ऐसा ढंग ले आप मन तकनीक अपना के आप मन अपन बीजाला भंडारण कर सकत हो और गुठिया बो ये संदेशा के बाद मां।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: किसान भाई बहनी हो, यही मौका हावा है कि हम अवैया खरीफ फसल के बीजा के चुनाव लकलिन। धान, राहेर, रमतीला, पटुआ, अमारी, तिली, मूंग, उड़द, भुरमूंग के संग आनी बानी के बीजा है, ओला उपचारित करके हमन सबला बुआई करना चाहिए और भंडारित करना चाहिए। धान के बीजा के बात करबो तो 2 ग्राम थायराम मा आप मन नहीं तो 2 ग्राम बाबिस्टिन ला 1 किलो बीजा ए मान ले बढ़िया खमोस खमोस के आप मन उपचारित करके छाम और सुखा के भंडारण कर सकत हो। जिन किसान भाई मन दलहनी फसल लगाते तिलहनी फसल लगाते तो मन टाइकोडर्मा फफूंदनाशी है नहीं तो राइजोबियम कल्चर है एक हल उपचारित करके बढ़िया बुआई बार भंडारित कर सकत है। और बीजा में कोनो किस्म के फफूंद मत लगाए बात के हमर किसान भाई मन चेत करे। अगर चेत करही तो कोई किस्म के संक्रामक कीड़ा मकोड़ा मन हमर बीजा में संक्रमण नहीं होही, पौधा खलो में संक्रमण नहीं होही। ओ भाई, पौधा स्वस्थ रही, बीजा स्वस्थ रही तो हमर फसल खलो स्वस्थ रही। भाई आप मन आज अगोरत हो फरमाइशी गीत के कार्यक्रम आप मन के गीत सुने बर तो हवा वही ढर चलत हन।

आप मन के गीत कार्यक्रम में मैं राजू भैया एक फिर स्वागत करत हूँ। संगवारी हो आप मन ला मातृ दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हन और हमार महतारी तो हमार आकाशवाणी भाई जिहा ले हमला मया दुलार आप मन भेज था और आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा हो गए संगवारी हो। जिहा ना जाए रवि वहाँ जाए कवि स्नेह भावना रख के दिखे तो आकाशवाणी हा तरंग के माध्यम ले कौन खोला कौन बिला अन में जंगल पहाड़ सब पहुंच जाते सूचना शक्ति हमला प्रदान करते और करोड़ों श्रोता ले जुड़ के आकाशवाणी हा उनला लाभ घलो पहुंचाते। आप मन जानत हो आकाशवाणी के भारत के प्रसारण के बात करबो तो 1927 में शुरू

दोहरी से और 1936 में एखर नाम ऑल इंडिया रेडियो रखे गई। तो संगवारी हो आप मल्ला आकाशवाणी के बात करबो 90 बच्छर पुर गए एखर आप लगाड़ा गाड़ा बधाई देथन। संगे संग आज मातृदिवस है जिसे हम पहले कहें कि आकाशवाणी है हमर महतारी कसे। हम तो अब बड़े माया करथन आकाशवाणी भाई आप मन जरूर करता तभी चिट्ठी पत्री भेजता ना। तो कार्यक्रम के पहली गीत बार जिन हमला चिट्ठी पत्र लिखे संगवारी मन उनका नाम हम पढ़ाथन भरेवा पथरिया ले हमार मयारू संगवारी है चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नोमेश नेहा और वानिया सिंगरौल पथरिया पीपर पारा पालचुअर हमार मयारू संगवारी है उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर जांजगीर मेहनले राम नारायण कश्यप कविता देवी कुसुमलता कश्यप खुशबू कुमारी कश्यप आप हो देवरी भाटा पारा ले भैया गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मयाराम रजक पुनेश्वर रजक फनेश्वर मुकेश कुमार कुमारी हाब्या रजक और कुमारी टानिया रजक आप हाओ हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल ए मयारू संगवारी मन है भाटापारा ले श्याम रतन मुदड़ा रचनाकार मुदड़ा रावण भाटा भाटापारा ले बबला यादव रिखिराम यादव श्रीमती कमलेश्वर यादव ये संगवारी मन के हमर चिट्ठिया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन देवांगन कौशल्या देवी देवांगन और हेमलता देवांगन डिंपल देवांगन डोंगर गांव जिला राजनांदगांव ले हमर मयारू संगवारी है राष्ट्रपाल गजभिये तन्मय बेबी अनिष्का राधिका गजभिये बाघ भरा भदरसी ले हमर मयारू संगवारी है पन्ना लाल सेन तारा सेन कौशल सेन और खुशबू सेन आप हो धुर्रा बांधा भाटा पारा ले भैया प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार साहू और युवराज साहू एक बो के दाई के दूध जिसे दुनिया माँ मिठाई नहीं मिलाए दाई के दूध जिसे दुनिया माँ मिठाई नहीं मिलाए और खोज डर भी दुनिया माँ तो दाई नहीं मिलाए यही भामा हम आप मन ला सुनाथन प्यारे लाल विश्वकर्मा के गाय ये सुगर भजन ला सुनाओ।

दाई के माया ला भुला नहीं सक कतका सुगर भाव भरे गीत ला हमला सुना मात्री से प्यारे लाल विश्वकर्मा ओकर संगवारी मन और दाई हमर एक है धरती दाई जिन हाँ समय भैया पानी के गिरे ले बढ़िया मगन हो गए और हमार किसान घलो मगन हो गए एक जिन अकरसहा पानी गिरे है संगवारी हो यह निश्चित रूप ले हमार किसान भाई मन भर वरदान है आप मन अकरस जुताई करियो तो जिन भूया के भीतर मलुका रहे थे कतको किस्म के वायरस जिन मन वहाँ अने अंडा दे रहे थे उमन जर भुजा के नष्ट हो जाते ऐसी स्थिति हम किसान भाई मला कहना चाहतन कि आप मन भाई अकरस जुताई के उदिन ला खचित करी हो ताकि ये जिन पानी गिरे थे ना ओकर बढ़िया फायदा आप मन ले सकत हो कार्यक्रम ला गति देबो शाद राम मरावी शैल बाला ध्रुव के गाय गीत के संग पसंद करे है हमारे ये मायरू संगवारी मन आप हो रशेड़ा अकल तरले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश साहू कीर्ति कुमार साहू संध्या साहू और डिकेश साहू वासु डालुई और पूर्वेश साहू आप हो चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले हमर मेहरू संगवारी है पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और इहेच ले है खुशी रौनक सेन मन आप हो ग्राम पंचायत मठनल हमार मयारू संगवारी बलकरण वर्मा अंजलि ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौदा सारा गांव ले सुजान वर्मा सहोद्रा वर्मा आयुषी कृति वर्मा आप हो रामचंद माखीजा काफिर भाई श्रीमती सविता बेबी स्वाति माखीजा माही पूजा और शरद और पूरा माखीजा परिवार बनिया पारा धमतरी ले बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले हमर मयारू संगवारी है राम दुलारी प्रजापति राम शरण चंद्रेश चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति और आप हो हटरी बाजार भाटापारा ले मोतीलाल देवदास श्रीमती गौतम देवदास मुकेश देवदास पवन गोलू देवदास दामन बोरले कुमार यादव श्रीमती अमृता यादव कामदेव यादव और लेखु यादव दतरेंगी भाटापारा ले हमर मयारू संगवारी है भैया विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु लक्ष्मीना यदु दशरथ प्रसाद यदु और मनोज कुमार जितेंद्र कुमार मानिकपुरी मिलाऊदास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई मोतीन बाई आप हो गांव गणेश धाम मरसली ले आप मन संगवारी में लिखे हमने चिट्ठी हथकेरा भाटापारा ले पंचू यादव दादू यादव बावली ले कमलेश साहू हरेंद्र साहू और सुशील बिलासपुरी मन हम तो ही कहबो सूरता तोर जब आते अमरैया मा जात हों सूरता तोर आते अमरैया मा जात हों कोली के कुहुक संग मैं मिझर जा

किसान भाई बहनी हो, यही मौका है कि आप मन अपन खरीफ के फसल के तैयारी के संगे संग मेड़ बंधाए के बूता ल घलो कर सकत हो। मेड़ बांधे ले फायदा होते कि एक तो जिन जुंडा मेड़ रहते वो मजबूत हो जाते और बढ़िया मढ़िलवानी अगर आप मन कर दिया तो राहेर तीवला तीवरा के संगे संग राहेर के संगे संग आप मन वहाँ मूंगफली हेला लगा सका था, तिली हेला लगा सका था। ये ढंग ले सावधानी पूर्वक आप मन मेड़ बंदी के उद्यम ला खचित करो, कार्यक्रम ला गति देवो। पसंद करे है हमर संगवारी मन गाँव बगबुड़वा पथरिया ले नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, कर ही सरगांव ले जन्मे जनेताम, कविता नेताम, रितिका गीतिका और चिंता मणि बंजारे। आप हो भाटापारा ले दान सिंह रावत, दामनी रावत, शुभम सौरभ रावत। ये चिट्ठिया है पहारा अहिवारा जिला दुर्ग ले पोषण बंछो।

चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंसोर के दतरंगी भाटा पारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दरचुरा ले ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी दुलोरिन, रेखा मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और आप हो हमर मयारू संगवारी जिला आपन चिट्ठी लिखे हा, ये हवा आप हो भाटा पारा ले बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत बिगो, विनय ठाकुर, छोआ राम वर्मा, सूरज बोरकर, नारायण यादव, राधेश्याम और शियाराम, अश्वनी मंडेमन। तो आप सबके प्रसन्न में हम आप सुनाबो सुमन परवार के गाय गीत। यही कहत के मोर बिहाह हो ही कही के अड़बड़ मुचावत है, मोर बिहाह हो ही कही के अड़बड़ मुचावत है, सुख दुख मया पीड़ा लबाटत मयारू लंग हंसत है। बरतिया मन गीत के धुनमा, बरतिया मन गीत के धुनमा अपने अपन नाचत है। यही भाव में हम आप सुनाथन सुमन परिवार के गाय ये सोहर गीत लावा सुनाथन।

25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, हवा पानी के संग कहूं कहूं पानी गिरे के संभावना है। मंडी के भाव हम लोग मिले हैं, सब्जी मंडी तिफरा के पताल 1200 ले 1500 रुपये क्विंटल, आलू 1400 ले 1600 रुपये क्विंटल, गोंदली के भाव 1200 ले 1400 रुपये क्विंटल, लहसुन 5700 रुपये क्विंटल, गेहूँ के भाव 3000 रुपये क्विंटल, बासमती धान के भाव 2330 रुपया, लौकी के भाव हम लोग मिले हैं 1100 रुपया और भाटा के भाव 1000 रुपया। कटघोरा मंडी में धान के भाव मिले हैं 2300 रुपया, गेहूँ 3000 रुपया, जोंधरी 2400 रुपया, चना देसी के भाव मिले हैं 5650 रुपया, सरसों के भाव 5950 रुपया और महुआ के भाव 4500 रुपया क्विंटल। संगवारी हो कार्यक्रम ला गति देवत हम और आप ला सुनवाबो लक्ष्मण मस्तूरिया के गाये गीत जिला पसंद करे है हमर मयारू संगवारी मन। आप हो करही सरगावले भैया प्रभात पांडे, मंजू पांडे, मृत्युंजय पांडे, पोड़ी भाटा कलतराले, दिलीप चंदन, चुआराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन, बिरगांव तखतपुर ले दिलीप कोल, जेमुन कोल, रामायणी कोल और भुवनेश्वरी। आप हो हमर मयारू संगवारी बसी बार ले आप लिखे हो शिवनारायण नामदे, सविता देवी, राम प्रसाद, कुमारी अचल अंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार, वर्षा और डॉक्टर मनोज कुमार कंवर। आप हो मोहम्मदपुर भक्तिन बाजार अकलतराले, रमेश कवर्थ, राजकुमारी आरती कवर्थ। आप हो भाटापारा ले श्यामरतन मुधड़ा, रचना का मुधड़ा और खर संगवारी मन। रोहासी ले है डगेशा राम साहू, नूतन साहू और घनश्याम साहू और गौरव साहू। पौड़ी लाफा जिला कोरबाले भैया विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी बबली, सुमन, मंटू, मिष्ठी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्ण कुमार, अंशु और पूरा साहू परिवार। आप हो छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगे, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर ले हमर मयारू संगवारी है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजाला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। तो आप सबों के पसंद में आप सुनवा थन लक्ष्मण मस्तूरिया के गाए ये गीत, यही कहत कि मोर मैना मंजूर मोर जाड़ समझा थन, मोर मैना मंजूर मोर जोड़ीदार के बोली निक लागे, मुचुर मुचुर हंसाई हृदय लभागे, हृदय लभागे। यही भाव हम आप सुना थन लक्ष्मण मस्तूरिया के गाए ये सुखर गीत ला सुनाऊं।

अभी संगवारी हो आप मन जाना थो लगातार एक दिन के आड़ मा अंधड़ आए ले कतकोठी पेड़ ह गिरे हे और जेन संगवारी मन आमा लगा हे तो बहुने कनुखन आमा मन गिर गए होई तो संगवारी हो ओला बिन के साफ करके आप मन बाजार में लेके बढ़िया जल्दी जल्दी बेच देवा। दूसर मा आप मन अवैया समय में कोनो किस्म के इतना अंधड़ मत आवाए हवा ज़्यादा प्रभावित मत करे तो बगीचा के तीर तीर में आप मन बाँस लगावा जिला विंड ब्रेकर हवा रोके के बढ़िया काम करते ऐसे वैज्ञानिक मन कथे। तो आप मन फलदार पौधा लगा है तो बांस के तीर तीर आप मन खेती जरूर करा जेखर ले कस के अगर हवा आते तो बांस हा रोक देते एखर ले कतको किस्म के नुकसानी जिन होने वाला थे वह नहीं हो। दूसर माँ जिन संगवारी मन इस समय लाख के खेती करे हो ही उमन लाख बढ़िया उतार ले और छाँट छाँट के जिसे कटघोरा क्षेत्र के बात करबो रंगनी और कुसमी लाख ऊंचे बहुत होते तो संगवारी मन ले के बढ़िया ग्रेडिंग करके छटाई करके और बेची तो बाजार माँ बहुत ही ज़्यादा मांग रहे। और एकर खेती के बात करबो संगवारी हो परसा है कुसुम है एमा हमारे संगवारी मन अभी घलो अपन क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी या फिर कृषि अधिकारी या उनकर सलाहकार जिन हमारे आकाशवाणी निर्देशन विशेषज्ञ सलाह उनकर सलाह लेकर अगर संगवारी मन रंगनी कुशमी लाख के खेती करी तो निश्चित रूप से एक बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। गवई गाँव में देखो तो बोईर है सीताफल है एवं घरों में एक खेती करते हमारे संगवारी मन निश्चित रूप से लाख लगाबो और लखपति बनबो ये दिशा में हम आगू बढ़ सकत हन। कार्यक्रम के आखिरी गीत पर हमला चिट्ठी लिखे है हमारे संगवारी मन आप हो सिंगिरी सी महानदी सिहावा पर्व अंचल बिल्लर गांव ले हमारा संगवारी मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन आप हो बलौदा अकलतरले दिरहना गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल ये संगवारी मन है लछनपुर ले रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू और आप हो कतिया पारा जूना बिलासपुर ले हमार मयारू संगवारी सुशील देवांगन अखिलेश देवांगन लोकेश आशीष रवि मोनू सोनू कान्हा आदित्य देवांगन बमहर चाटी डी ले गंगा देवी देवांगन पूनम देवांगन धनेश्वरी महेश्वरी कुमारी मिल्की बेबी मीनाक्षी निधि देवांगन मन आप हो शांति नगर पाली ले विष्णु सिंह कुराम श्रीमती संतोषी कुराम कुमारी आरती कुमारी पूर्वा कुमारी प्रतिभा योगेश नीलेश चंद्रशेखर और पूरा कुराम परिवार कोरबी बेलतरा ले हमर मयारू संगवारी है आप हो मोहन सिंह राज अनीता राज सुमित सोमू और मानस राज। तो आप सबके पसंद में हम आप मल्ला सुनाथन बैतल राम साहू के गाय ये सुघर गीतला सुनाऊ।

0: la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la.
2: मुला जान दे नारियल बेला मोर तो भाई हमरो जाए कि बेरा हो गए जात जात अपन पता हम आप बतातन आप मन के गीत ग्राम सभा अनुभाग पोस्ट बॉक्स नंबर 49 द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर पिन नंबर है 495006 और एक संग राजू भियाला दोबिदा ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मू संगवारी मुला राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान के गाए गीत और गजलों को।

0: यूपीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर के नवीन भवन में दिनांक 11 मई 2026 यानी कल सुबह 10:30 से अप्रेंटिसशिप मेला का

0: आयोजन हो रहा है, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, जिला बिलासपुर से व्यवसाय विद्युतकार, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, शीट मेटल वर्कर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, कोपा एवं वेल्डर के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी अपने समस्त दस्तावेजों के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु प्रशिक्षणार्थी आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर में कार्यालयीन समय पर अप्रेंटिसशिप विभाग से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान के गाए गीत और गजलों को।

नुसरत फतेह अली खान और साथियों की गाय इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, आज रजनीगंधा कार्यक्रम में यादें और बातें एक प्रसिद्ध गीतकार, पटकथा लेखक और उर्दू कवि, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उर्दू साहित्य को नई पहचान दी। इन्होंने कागज की फूल, हकीकत और हीर रांझा जैसी फिल्मों के सुपरहिट गाने लिखे। वे थे कैफी आजमी। आज 10 मई को इनकी पुण्यतिथि है। कैफी आजमी का पूरा नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव मिजबान में 14 जनवरी 1919 में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही कविताएं पढ़ने और लिखने का शौक था। इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपनी पहली गजल लिखी। किशोर होते होते मुशायरों में शामिल होने लगे। 1936 में वे साम्यवादी दल से जुड़े और इनकी मुलाकात इनकी जीवन संगनी शौकत से हुई। शौकत को साहित्य में बहुत रुचि थी। वे कैफी आजमी के लेखन से बहुत प्रभावित हुई और वे मई 1947 में विवाह बंधन में बंध गए।

आर्थिक रूप से संपन्न शौकत ने अपने पति कैफी आजमी का हर परिस्थिति में साथ दिया। खेतवाड़ी में दोनों रहते थे, जहां सुविधाओं का अभाव था। यहीं पर शबाना आजमी और उनके भाई बाबा आजमी का जन्म हुआ। बाद में वे जूहू स्थित बंगले में आए। फिल्मों में उन्हें मौका मिला फिल्म बुजदिल के गीतों से। अपने प्रभावी लेखनी से वे गीतकार और पटकथाकार के रूप में फिल्मों में स्थापित हुए। उन्होंने शमा, शोला और शबनम, कोहरा, नकली नवाब, दो दिल, आखिरी खत, अनुपमा, हीर रांझा जैसी फिल्मों के शानदार गीत लिखे।

कैफी आजमी सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाली बेहद हसमुख स्वभाव की थी। सन 1973 में उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। इतनी बड़ी बीमारी से ठीक होने के बाद उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए जीना बताया। वे अपने गांव मिजवान में स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, सड़क बनवाने में मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर से फूलपुर सड़क को कैफी मार्ग घोषित किया। कैफी आजमी को राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। सन 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

कैफी आजमी की कई शायरी की पंक्तियाँ जो फिल्मों में गाए गए हैं, जिन्हें आज भी हम गुनगुनाते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वो किसी और का क्यों है।

कैफी आजमी ने 80 से अधिक हिंदी फिल्मों के गाने लिखे हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी कैफी आजमी का निधन मुंबई में 10 मई सन 2002 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनके चले जाने पर उनके लिखे गीत हमेशा याद बनकर हमारे दिलों में रहेंगे। आइए सुनते हैं उनके लिखे कुछ गानों को।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम रजनीगंधा अब यही समाप्त होता है। साथियों, आज का रजनीगंधा हमने केंद्रित किया था प्रसिद्ध शायर गीतकार कैफी आजमी की पुण्यतिथि पर। अब दीजिए अनुमति अपने साथी आरती को कार्यक्रम रजनीगंधा से। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर

0: के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के चार लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व

0: प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरीकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते।

इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और

0: रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judicially in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. It is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad.

मोहम्मद रफी की आवाज में आप वासना फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, रचना प्रेम धवन की है और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में बड़ा आदमी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना प्रेम धवन की थी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए सुनिए एसएच बिहारी का लिखा गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और देखिए ना, चारों तरफ फूल खिले हैं और मत भरी रुत जवान है। इन मीठी स्वर लहरियों की तरंगों पर सवार होकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े हैं।
1: मिलन को जान

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत

में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुने।

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

0: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।
1: पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग दिला

सन 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुन्नलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

इस बार भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया, हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जानी मानी गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: छाया गीत आप सुनेंगे।

तुम्हारी आंखों में सपनों के बीज रोपे थे, उनमें खिलने थे फूल, पर हर बीज कहां अंकुरित हो पाता है। वक्त की तेज धूप ने सूख ली नमी सपनों की, अब हवाएं भी चुभती हैं और आंखों में टूटे ख्वाबों की किरचियां जलन पैदा करती हैं। वक्त का पहिया किन किन दिशाओं में घूम जाता है समझ नहीं आता।

हस्तियों का कोई मुल्क नहीं होता, वो हवाओं में उड़ती हैं किसी फाहे की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं हैं, सुरमई उदास शामों में गूंजती हैं खामोशियां।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल। ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया। दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में है धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार, और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

एक सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल, यादें जिनमें दर्द भी है तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

फिल्म वली-ए-आज़म। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।